सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 33 सेकेंड वे हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की इस सभा में।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु की महिमा अपार है। सभी जीवों का उद्धार करने वाले प्रभु सदैव सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपका स्मरण ध्यान बराबर होता रहे, इतनी कृपा बरसाए रखना।

निरंतर यह अनुभव करते रहना चाहिए कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर अनवरत अपार रूप से बरस रही है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु नाम का स्मरण करते रहना चाहिए।

संजीव अभ्यंकर, गिरिजा देवी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आज आपने सुनी भक्ति रचनाएं आज के वंदना कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देश गान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु। इसमें आज आप सुनेंगे हकदार विषय पर आलेख। आलेख है डॉक्टर शरद चंद्र सक्सेना का, वाचन है राखी कटारा का।
1: मम्मी ने गौरव को मुंह अंधेरे झकझोर कर जगा दिया। गौरव जल्दी उठ, पड़ोस के कन्नू लाली छुट्टन राधा चारू और यति को कह के आ, नाश्ता ना करें। कहना मम्मी ने देवी के व्रत रखे हैं, तुम सबको निमंत्रण है 9 बजे आ जाना। गौरव बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठ पाया, आंखें खोली और अलसाया हुआ बोला, मम्मी क्या निमंत्रण पर जाने के लिए भूखा रहना आवश्यक होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चे भूखे हैं या नहीं? मैं भी तो चुपके से खाकर ही निमंत्रण पर खाने जाता हूँ। मम्मी अपने काम की हड़बड़ी में झल्लाते हुए बोली, गौरव तुझसे बहस करने को कौन कह रहा है? व्रत के दिन भूखे बच्चों को ही भोजन कराना चाहिए, देवी इससे प्रसन्न होती है, देवी की कथा में भी लिखा हुआ है। गौरव ने अपनी बाल बुद्धि से फिर तर्क दिया, लेकिन मम्मी कन्नू लाली छुट्टन के पापा तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और चारू यति के डैडी डॉक्टर हैं, तो ये बच्चे भूखे कैसे हुए? मम्मी किसी तर्क को सुनने के मूड में नहीं थी। वे पुनः झुलझुलाई, अरे पागल ये बात विवाद का समय नहीं है, जल्दी जाकर बच्चों को खबर कर दे, यदि बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो सब अनर्थ हो जाएगा, मैं और बच्चे कहां से लाऊंगी। गौरव असमंजस में घर से बाहर निकल आया। वो 12वीं कक्षा का छात्र था, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, पिता भी उसके प्रोफेसर थे, माँ पुराने संस्कारों में पली एक धर्म भीरू महिला थी। गौरव ने अंधविश्वास के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, यही कारण था कि माँ के तर्क उसके गले नहीं उतर रहे थे, फिर भी वो माँ की बात को नहीं काट सका। गौरव जल्दी जल्दी कन्नू लाली के घर पहुंचा और कॉलवेल का बटन दबाने ही वाला था कि वो ठिटक गया और पल भर में एक आश्चर्यजनक निर्णय ले डाला। वो सीधे अपनी काम वाली बाई के घर पहुंच गया। वो जानता था कि सच्ची भूखे इसी बस्ती में ही रहते हैं। इन भूखों को

0: भोजन कराने में ही सच्चा देवी का पुण्य है। उसने घर से बाहर आवाज लगाई, सरला, मिट्टू, पूनो, तरुण बाबू को घर भेज दे, मम्मी ने बुलाया है। गौरव बच्चों को अपने साथ ही ले आया। घर आकर देखा, मम्मी नहा धोकर पूजा कर रही थी। मौसी चौके में भोजन बना रही थी। पूजा से निवृत्त हो मम्मी ने आवाज लगाई, गौरव बच्चों को ले आ। मम्मी अभी लेकर आया, कहकर गौरव मिट्टू, पूनो, तरुण और बाबू को अंदर ले आया। मम्मी विस्मय से बच्चों को देखती रह गई। वो चिल्लाकर बोली, निकालो इन सबको, तुमने पूजा ही खंडित करवा दी। गौरव नम्र स्वर में बोला, मम्मी मैं भूखों को भोजन करवाने लाया हूँ। आपने ही तो कहा था भूखों को भोजन करवाने से देवी माँ प्रसन्न होती है। मम्मी ये सचमुच भूखे हैं, इनकी दशा बता रही है कि आपके भोजन के ये सच्चे हकदार हैं। मम्मी बुच्ची खड़ी गौरव की बात सुनती रही, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शायद गौरव की हर बात उसकी समझ में आ रही थी। वो दौड़कर बच्चों के पास गई, उनके हाथ पैर स्वयं धोए, प्यार से धुले चौके में ले जाकर भोजन कराया। गौरव जो दूर खड़ा था मम्मी से दौड़कर चिपट गया।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम, जिसमें आपने सुना हकदार इस विषय पर आलेख। आलेख था डॉक्टर शरद चंद्र सक्सेना का, वाचन था राखी कटारा का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री राम चरित मानस गान। स्वर है जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत है सतीश भाटिया का।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा गर्मियों में पशु सुरक्षा। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने आपको सुनवाएंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7:00। सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नौटंकी सत्यनारायण व्रत कथा। लेखक होंगे कौशल किशोर गौड़। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9:00 स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा बढ़ते तापमान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बाके बिहारी गर्ग। इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय संकट प्राण वायुदाता का। वाचन होगा श्री हेमंत झा का। गांधी चर्चा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 9:45 पर सुगम संगीत में आज आपको सुनवाएंगे दान बिहारी ब्रजवासी के गाए कुछ भजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय सुबह 10:00। 10:30 पर फिल्म संगीत और दिन 11:00 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति होगी देवराज कृष्ण दीक्षित की। भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम अर्पण 11:30 पर। मध्याह्न 12:00 गीत बात और SMS ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कलाकार पूनम के गाए लोकगीत।

दोपहर 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साथ ही वार्ता सुनिएगा, बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें। वार्ताकार होंगी श्वेता कुलश्रेष्ठ। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत सुनाया जाएगा अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में बात होगी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। साथ ही सुनिएगा गीतों भरी कहानी उम्मीद की किरण, प्रस्तुति होगी शारका शेख की। शाम 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा होगी मिट्टी पानी की जांच और साथ ही चर्चा होगी गर्मियों में गहरी जुताई के लाभ। वार्ता सुनिएगा बगीचा लगाने हेतु लेआउट। वार्ताकार होंगे डॉक्टर धनराज शर्मा।

संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर, 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज नव कथा किस्मत को लेखो, कहानीकार होंगे शिवदत्त चतुर्वेदी। शाम सुहानी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा रात्रि 8:30 पर। रात 10 सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा दीपाली जैन के गाए भजन और गुलाम साबिर की गाई गजलें। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे उस्ताद राशिद हुसैन खां का ख्याल गायन, राग होगा रागेश्री। तबले पर संगत करेंगे आनंद गोपाल बैनर्जी।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है गर्मियों में पशु सुरक्षा। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, गर्मी इस समय अपने चरम पर है। मनुष्य को कूलर और पंखे में चैन नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में हम अपने पशुओं की सुरक्षा कैसे करें, आज इसी विषय पर हम आपके सामने बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जानवरों को तेज़ धूप में न बांधें, उसको बंधा हुआ न छोड़ें तेज़ धूप में। जानवर को तेज़ धूप में काम भी नहीं लेना चाहिए। अगर काम लेकर के आ रहे हैं तो उसको ठंडे के समय में ही सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम लें और उसके बाद उसको पानी पिलाएं। जानवरों को समूहों में इकट्ठा बांधने पर भी बहुत अधिक उस क्षेत्र में गर्मी हो जाती है, उस जगह पर गर्मी हो जाती है, उससे भी बचना चाहिए। काम से पशु लौटता है तो उसे तुरंत नहला दिया जाता है या बहुत अधिक ठंडा पानी पिला दिया जाता है, इससे भी पशु बीमार हो सकता है। इसलिए अगर काम के बाद पशु लौट रहा है तो उससे थोड़ी देर उसे ठंडा होने दें, उसके बाद उसको पानी पिलाना चाहिए और तब उसको जो चारा है वो दिया जाता है। वातावरण का तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक इस समय है तो उस समय जानवरों को ज़्यादा गर्मी लगने की संभावना रहती है, तो इसलिए जो काले धन वाले पशु हैं और ख़ास करके उनको तो बाहर धूप में नहीं बांधना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे छाया में उनको बांधना चाहिए। और काले रंग वाले जो पशु हैं उनको विशेष रूप से बहुत अधिक गर्मी लगती है। किसी भी आयु के पशु को लू लग सकती है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। जब पशु को लू लग जाती है तो उसमें किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं इसको आप पहले जान लें। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ये तापमान करीब 106 से 107 और कभी कभी 110 डिग्री

0: फॉरेन हाइट तक पहुंच जाता है। बेचैनी होती है, सुस्त हो जाता है पशु, हाथ पैर में उसके में दर्द होता है, मांसपेशियां में जो है हड़कल होती है, मुंह एकदम सूख जाता है, जीभ बाहर निकल आती है, मुंह से झाग देने लगता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, सांस लेने का औसत उसका अपेक्षाकृत बढ़ जाता है और शरीर का भार कम होने लगता है। लू के प्रकोप से कुछ जानवरों में तो गर्भपात हो सकते हैं, कुछ जानवर तो फिर गर्मी में भी नहीं आते हैं, उनमें बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो नहीं रहती है। दूध देने वाले पशुओं को इस समय दूध की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है, अगर उसको एक बार लू लग जाती है तो फिर दूध पर उन्हें आने में उस काफ़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सावधानी के तौर पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको सूरज की रोशनी से अलग ठंडे स्थान पर इन पशुओं को रखना चाहिए, और अगर कोई बीमार पशु हो गया है तो ठंडे स्थान पर रख करके उसका उपचार किया भी जाना चाहिए। ठंडे से पानी से पशु को पोंछें, बर्फ़ की पट्टी शरीर पर रखें यदि बहुत अधिक बुखार आपको महसूस हो रहा है तो, और पैरासीटामोल 5 ग्राम एक समय में आप पशु को खिला सकते हैं ये टैबलेट, या 5 ग्राम की एनाल्जिन की गोली भी खिला सकते हैं जिससे पशु के तापमान में कुछ कमी आए। इसके अतिरिक्त पानी पशुओं को प्रचुर मात्रा में पिलाते रहें, पानी में थोड़ा सा नमक और गुड़ मिला करके भी पिला सकते हैं। सावधानी के तौर पर बहुत अधिक गर्मी में पशुओं से काम न लें, जहाँ पर हवा का आवागमन है वहाँ पर पशुओं को बांधें, ठंडे स्थान में बांधें, छाया में बांधें, और इन सब बातों को ध्यान में रख करके पशुओं की सुरक्षा करेंगे तो लू से पशुओं की सुरक्षा हो सके।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गर्मियों में पशु सुरक्षा इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य UAE, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी UAE देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य LPG इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिल ईंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी LPG इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृत।

0: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य आंध्र प्रदेश से श्री सत्यसाई मंडल से पुट्टपर्ती इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापना कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। रक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत, जो आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

ममता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजों में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे रोशन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म से, लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, आवाज है लता मंगेशकर की।

भाई भाई फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की, कहा संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जन हानि प्रयागराज में हुई है जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई।
4: इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान

0: प्रारंभ किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
1: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15,00,000 से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
4: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया।

0: प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
1: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध संख्याओं को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।

भैयाओं, यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए रहे हैं नौटंकी सत्यनारायण व्रत कथा। लेखक हैं कौशल किशोर गौड़।

अभी आप सुन रहे थे नौटंकी सत्यनारायण व्रत कथा, लेखक थे कौशल किशोर गौड़। यह कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाओ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।
2: विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा

0: वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री

0: परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपए और डीजल 93.14 रूपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपए और डीजल 95.13 रूपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपए और डीजल का मूल्य 95.35 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।

0: इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र की सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं इतिहास फिल्म से, गाया है अनुराधा पौडवाल और ए हरिहरन ने, बोल समीर के हैं, धुन बनाई है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

दीवाना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शवर ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हिना फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: गदर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के दे धुन बनाई थी उत्तम सिंह ने। इस गाने के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है बढ़ते तापमान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बांके बिहारी गर्ग और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसे ही गर्मी आती है तो निश्चित तौर पर हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन गर्मी जब 40+ हो, तापमान थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ी ह्यूमिडिटी हो, चूँकि हम काम तो करते ही हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं, तो 40+ जब होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो सामान्य भाषा में हम इसको गर्मी बोलते हैं, लू बोलते हैं, लेकिन आजकल जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हीट वेव भी एक शब्द आ रहा है। तो डॉक्टर इस बात को लेकर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या कुछ एहतियात और बचाव हमको अपने स्तर पर करने चाहिए अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के हिसाब से, ये आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर बांके बिहारी गर्ग साहब, जो वरिष्ठ फिजिशियन है मथुरा शहर के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सिंह सर
1: जी। तो तापमान तो काफी बढ़ रहा है,
2: बिल्कुल
1: है?
2: बिल्कुल।
1: और हीट वेव अगर हम इसको कहें तो
2: कह सकते हैं
1: क्या बताएंगे आप श्रोताओं को कि क्या चीज है इसमें?
2: दरअसल वातावरण में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और गर्मी की वजह से बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक ही परेशानी के दो, एक हल्का
1: दो तरह से
2: एक,
1: कैसा,
2: हाँ, एक हल्का और एक थोड़ा सा गंभीर
1: जी।
2: हम लोग जैसे कि कहते आए पहले से भी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इनसे बचाव ही इस चीजों का
1: ज्यादा बेहतर है कि हम थोड़ा सा बच के रहे जी।
2: तो जब वातावरण में गर्मी बढ़ती है तो जो हीट एग्जॉशन है, हीट स्ट्रोक है, ये बेसिकली तीन मुख्य कारण रहते हैं इनके पीछे। कि जैसे हीट एग्जॉशन यूजुअली 27 डिग्री से और 39 डिग्री के बीच जब टेम्परेचर रहता है और तब ज़्यादा चांसेस होते हैं हीट एग्जॉशन के, और 40 डिग्री से ऊपर जाने पे हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें करीब दो तीन फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो वातावरण का टेम्परेचर है और दूसरा ह्यूमिडिटी। यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, भले ही टेम्परेचर कम है, तो भी हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा फैक्टर है कि हमारे काम करने का तरीका कैसा है, काम करने के आवर्स कैसे हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं, मजदूर हैं, जो कि धूप में काम करते हैं, या किसान लोग हैं जो धूप में काम करते हैं, तो और उनका काम काफ़ी हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं, तो ये लोग ज़्यादा इस चीज़ों के लिए हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के लिए ज़्यादा प्रोन है, बजाय कि एक एसी चैम्बर में बैठे हुए काम करने वाले आदमी के या इंडोर में काम करने वाले आदमियों के, उन्हें कम परेशानी होती है। इन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है जो कि आउटडोर काम करते हैं
1: जी, मतलब जो खुले में कर
2: खुले
1: रहे
2: में काम कर रहे हैं,
1: धूप निकली हुई है और काम भी ऐसा है जो अपने आप में हीट पैदा कर रहा है। अब देखते हैं कि भाई लेंटर पड़ रहा है, लोग सरिया बांध रहे हैं, खेत खलियान की काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, बैल कर रहे हैं, तो जो मतलब वैसा भी काम है जो जिसमें दम भी लगाना पड़ रहा है, श्रम भी हो रहा है,
2: और सन से एक्सपोजर भी हो रहा है,
1: कंडीशन भी, तो वहाँ उन लोगों के चांस
2: ज्यादा रहते हैं।
1: तो अब कंडीशन तो सर दिख रही है कि 40 के आसपास चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे,
2: बचाव तो बहुत जरूरी है।
1: इसमें फिर क्या लगता है, मतलब बचाव ही,
2: ये हीट एग्जॉशन बेसिकली जब शुरू होता है ये 40 के आसपास या इसमें, तो इसमें क्या होता है कि एक तो पसीना खूब आने लगता है, स्किन जो है ठंडी

टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है कई बार, 100 से ऊपर जाता है, 103 तक भी जाता है कई बार हीट एग्जॉशन में, और क्रैम्प्स आने लगते हैं शरीर में, क्रैम्प्स आते हैं, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, पल्स हाई हो जाती है, वीक, कमज़ोर हो जाती है पल्स, तो यही सारे

0: आप
1: ये दिस
0: थोड़ा
1: इज
0: समझ
1: अलार्म
0: जाए
1: मूड
0: कि भाई
1: बिल्कुल
0: अब है और काम को छोड़ के तो थोड़ा आराम करें फिर।
1: आराम करें, प्लस उसके बचाव के उपायों में जाएं, आराम भी करें, प्लस इसके लिए हम कहते हैं कि एक तो फ्लूइड्स पूरे पूरे लेने चाहिए, 3-4 लीटर फ्लूइड्स होने चाहिए, फल ज़्यादा खाने
0: फल
1: चाहिए,
0: ज्यादा खाना है।
1: और जब ये परेशानी हो तो थोड़ा सा शेडो में चले जाएं या एसी में चले जाएं, यदि आपके पास सुविधा है
0: जैसी
1: तो,
0: सुविधा है
1: जैसी सुविधा
0: तो
1: है
0: उस तरह का वो
1: हाँ
0: कर ले
1: कर
0: उसमें।
1: ले। इस हिसाब से थोड़ा सा हमें कपड़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि एक तो लाइट कलर्ड कपड़े पहनने चाहिए, दूसरा लूज पहनने चाहिए, तीसरा कॉटन के कपड़े रहें वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा हमें अपनी एक्टिविटीज़ जो है इन दिनों में प्लान करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मैक्सिमम सन टाइम है, जैसे कि 10-11 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को 4 बजे तक मैक्सिमम गर्मी पड़ती है,
0: जी
1: तो उस बीच में हम कम से कम निकलें या अपने आप को इस तरह से एक्लेमेटाइज करें धीमे धीमे 8-10 दिन का टाइम लेके कि हम थोड़ा थोड़ा करके निकलें और फिर बचाव के उपाय ढूंढते रहें, तो अपने आप को एक्लेमेटाइज भी कर सकते हैं इन
0: मतलब उन
1: चीज़ों के लिए।
0: कंडीशंस में हमारा शरीर और हमारा वो
1: हाँ
0: उसके सहने योग्य हो जाए
1: सहने हो
0: तो
1: हाँ तो
0: उस
1: वो
0: तरह का
1: बेहतर
0: काम कर
1: है।
0: लें उसमें।
1: एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जब कभी भी हम ऐसे उसमें गर्म मौसम में 11 से 4-5 बजे के बीच में अपनी गाड़ी पार्क करें तो उसमें या तो बच्चे को या अपने पेट को कभी ना छोड़ें, वो नहीं तो वो जो है
0: हाँ, इस
1: गर्मी
0: तरह की कभी
1: के
0: दुखद घटना हमें सुनने
1: दुखद
0: को
1: घटना
0: मिलती है
1: हाँ
0: कि
1: वो नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चे को गाड़ी में पार्क गाड़ी में छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया या पेट को छोड़ दिया तो दुर्घटना उस समय हाँ हो
0: जाती
1: सकती
0: है
1: है,
0: क्योंकि उसमें गैस बनेगी,
1: गैस बनेगी
0: ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फिर वो
1: हाँ,
0: बेहोश हो
1: वो
0: जाएगा और
1: बेहोश हो
0: आप
1: जाएगा,
0: बोल भी नहीं
1: बोल भी नहीं पाएगा,
0: पाएगा
1: बाहर भी
0: उसमें।
1: नहीं निकल पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा, तो ये चीज़ें हैं इस हाँ
0: जी,
1: आप
0: कुछ
1: पूछे
0: हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे एक्सट्रीम हो रहा है उसमें आपने कुछ कारण बताए, इसके अलावा कुछ इंटरनल वो भी हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को आप देखा होगा कि नक्सीर चल गई
1: हाँ
0: उसमें जैसे, तो वो क्या इस समय ऐसा हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अन्य चीजें भी हैं, ये चीज तो है ही लेकिन कोई
1: साथ
0: भी,
1: में यदि
0: हाँ
1: बीमारियां हैं तो ये
0: बीपी का
1: परेशानियां और
0: है, डायबिटी का
1: बढ़
0: है,
1: जाती
0: इम्यून
1: हैं।
0: पावर कमजोर है
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: क्रोनिक डिजीज का
1: उन्हें तो
0: वो
1: निकलना ही नहीं चाहिए,
0: उन्हें तो
1: हम लोग
0: उन
1: यूजुअली एडवाइस करते हैं कि बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को
0: जी
1: जिनके साथ कोमोर्बिडिटीज ज़्यादा जिन्हें बीमारियां हैं उन्हें इस 11 से 10 11 बजे से 4 बजे के बीच में इतनी गर्म वातावरण में निकलना ही नहीं चाहिए।
0: और जो लोग कामकाजी जैसे आपने बताया तो वो फिर कुछ जैसे, वैसे तो आपने कहा कि कॉटन के कपड़े हों, ढीले हों, कम गहरे कलर के हों, सर पे जैसे अंगूछा वंगूछा
1: हाँ
0: लेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल वो भी
0: बीच
1: हेल्पफुल
0: बीच में
1: है,
0: थोड़ा गीला
1: हैट
0: करके,
1: ले सकते हैं, अपना
0: हाँ
1: कैप लगा सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, गॉगल्स पहन सकते हैं, सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि स्किन का सन से बचाव हो। बेसिकली जो हमारी स्किन है वो हमारा फर्स्ट लाइन प्रोटेक्टर है, वो हमारा कहिए कि हमारी सेना है, क्यों हर चीज़ से ये हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही जैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे खून का जो सर्कुलेशन है स्किन के लिए वो बढ़ता जाएगा, और बढ़ते जाने के में वो एक्टिवेट करता है हमारी स्वेट ग्लैंड्स को जो पसीना बनाती हैं, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा सर्कुलेशन तो ये स्वेट पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो उससे हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होगी, वही बॉडी का टेम्परेचर तो एक फिक्स्ड है कि 97 to 99 के बीच में मेंटेन करना है, तो ये हमारी स्किन का एक इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो जब हमें स्वेटिंग होगी तो वो कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, मेंटेन होगा। आपने देखा होगा अक्सर कि घमौरियाँ हो जाती हैं गर्मी के दिनों में, घमौरियाँ हो जाती
0: हाँ,
1: हैं
0: हमारी इचिंग होती है। जी
1: हाँ
0: जी
1: हाँ हाँ बम्पिंग हो जाती है स्वेट ग्लैंड्स की, तो वो इसलिए कि वो ब्लॉक्ड होती हैं,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जहाँ घमौरी हो रही है
1: वो
0: वो
1: ब्लॉक्ड है,
0: ब्लॉक्ड,
1: पसीने को बाहर नहीं निकाल पा रही है,
0: और पसीना
1: तो
0: निकलने
1: पसीना
0: की कोशिश करा इसलिए
1: निकल
0: घमौरी हो गई
1: इसलिए
0: वहाँ।
1: घमौरी हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा वो है। तो इसमें भी ये है कि देखिए ह्यूमिडिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, कम टेम्परेचर पे भी हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक हो सकते हैं, वो
0: अगर
1: इसलिए
0: ह्यूमिडिटी ज़्यादा है
1: हाँ
0: तो
1: हाँ एक नॉर्मल एक कंफर्टेबल रूम का जी की जो ह्यूमिडिटी है वो 30 to 50 के बीच में होना चाहिए, और यूजुअली 60 तक तो आदमी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन 60 से जैसे आगे बढ़ते हैं 70% 80%

0: हो गई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है हीट स्ट्रोक और उसके लिए भी,
1: जी
0: क्योंकि पसीना तो आपका निकल रहा है लेकिन वो एवोपरेट नहीं हो
1: सोख
0: रहा
1: नहीं रहा।
0: क्योंकि बाहर इतनी नमी है मौसम में
1: इसीलिए शायद इस समय 40 और 40+ हो रहा है तो
0: नहीं
1: इतनी बेचैनी नहीं है।
0: है,
1: बरसात
0: लेकिन
1: में
0: बरसात में जब
1: 35, 36 पे भी
0: नमी,
1: जो ह्यूमिडिटी
0: हाँ,
1: 80-90
0: और
1: होती है
0: बॉडी का
1: तो
0: जो बॉडी की जो फीलिंग है टेम्परेचर की, वो लगेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है,
1: बिल्कुल
0: और जबकि
1: बिल्कुल
0: इतना टेम्परेचर होता नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारी बॉडी फील करती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है,
1: जी जी
0: तो उस समय
1: जी
0: गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीने बस
1: जी
0: होते रहते हैं।
1: तो अब जैसे कुछ लक्षण आपने बताए कि अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है तो इस तरह का।
0: हीट स्ट्रोक में ये नहीं, हीट स्ट्रोक थोड़ा सा गंभीर परेशानी है।
1: अच्छा जी
0: यदि हीट स्ट्रोक किसी को हो रहा है तो ही शुड ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल, ही शुड गो टू अ
1: तो
0: हॉस्पिटल।
1: वहां कैसा लगेगा फिर?
0: वहाँ तो फिर ये सारी चीज़ें हैं कि आदमी जो है बहका बहका सा बच्चे वो करेगा, सीजर आ सकते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स टाइप के आ सकते हैं, मतलब दौरे जिसे कहते हैं,
1: मतलब जो यहाँ बेहोशी सी हो रही
0: हाँ
1: थी,
0: वो,
1: उनीदी
0: हाँ
1: पना
0: कमजोर,
1: सा हो रहा
0: हाँ
1: था, कमजोरी हो रही थी,
0: हाँ
1: वहां फिर वो एग्जैगरेट हो जाएगी
0: एग्जैगरेट हो
1: कि
0: जाएंगी
1: आप
0: वो
1: बेहोश
0: चीज़ें,
1: हो ही
0: हाँ, और
1: जाएंगे,
0: बेहोश भी हो
1: आप
0: जाएंगे,
1: गिर
0: हो
1: भी
0: सकते हैं,
1: जाएंगे, आप चक्कर
0: बिल्कुल
1: आके आपको
0: बिल्कुल
1: बेहू आ
0: बिल्कुल
1: जाएंगे, तो
0: बिल्कुल,
1: वो समझ लेते कि आप हीट स्ट्रोक हो चुका है
0: हाँ,
1: और अब हमें
0: और
1: हॉस्पिटलाइज होने की
0: हॉस्पिटलाइज
1: जरूरत।
0: हो जाना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: ये चीज़ें हीट स्ट्रोक में तो आपका लिवर फेल हो सकता है,
1: जी
0: अरिथमियाज हो सकते हैं, हार्ट की वो है
1: पंपिंग
0: धड़कन
1: है।
0: है
1: हाँ हाँ
0: वो इतर बितर हो सकती है,
1: जी जी
0: तो ये सारी प्लस कोम ये वाले ब्लीडिंग हो सकती है जो आप फिर से कह रहे थे,
1: नक्सीर हो रही
0: हाँ
1: है।
0: नक्सी ब्लीडिंग DIC बोलते हैं हम
1: जी
0: लोग,
1: जी
0: ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन है,
1: हाँ
0: ये सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वहाँ क्लॉट्स भी जम
1: हाँ
0: जाते
1: मतलब
0: हैं,
1: एक बाहर निकल रहा है तो ये फिर भी ठीक है कि हमें
0: हाँ
1: दिख रहा
0: दिख
1: है,
0: रहा है, लेकिन
1: और अंदर हो गया
0: अंदर हो जाता है,
1: दिमाग में हो गया तो वहां
0: फिर
1: फिर।
0: ये जानलेवा हो जाती है,
1: हाँ इसीलिए शायद हीट स्ट्रोक नाम जब आता है तो
0: हाँ
1: हम उसकी गंभीरता को
0: हाँ
1: महसूस करते हैं
0: महसूस
1: और
0: करना।
1: परेशानी भी होती है।
0: तो इन सब चीज़ों के लिए बचाव ही हमारा उपाय है कि ये स्थिति हीट स्ट्रोक वाली ना आ
1: ना
0: पाए,
1: आ पाए तो
0: हाँ,
1: हम बच के रहे।
0: कि
1: तो
0: हम
1: उसमें
0: बच
1: पहला तो ये हुआ कि जब एक्सट्रीम
0: गए,
1: टेम्परेचर जा रहा है, ये
0: हाँ
1: एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से भी आई है कि
0: हाँ
1: हम 11, 11:30, 12 से लेकर
0: हाँ
1: के 4 बजे तक ना निकले
0: ना निकले,
1: जब एक्सट्रीम जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले अपनी गतिविधियां कर लें
0: हाँ
1: बाद में कर लें,
0: हाँ
1: और अगर जा ही रहे हैं तो फिर प्रिकॉशन ले लें,
0: प्रिकॉशन ले,
1: कपड़े उस तरह के हों, सर को
0: बिल्कुल,
1: बांध
0: हाँ
1: लें,
0: लिक्विड्स लें, फ्रूट्स
1: फ्रूट्स।
0: खाएं, आजकल खरबूजे
1: हाँ
0: तरबूजे
1: और
0: फवारा
1: नेचर ने शायद
0: नेचर ने
1: ऐसा
0: दिया
1: लगता है
0: भी
1: कि जब
0: है,
1: गर्मी ज्यादा होती है तो
0: हाँ
1: ज्यादातर फल मिलते
0: मिल ही
1: हैं,
0: जाते हैं,
1: उनमें
0: पानी की
1: पानी की
0: मात्रा
1: मात्रा
0: ज़्यादा
1: ज्यादा
0: है,
1: है
0: जैसे आप
1: खरबूज में।
0: खरबूज तरबूज देखिए तो उनमें पानी बहुत है,
1: खीरा खाएं, आम
0: खीरा
1: खाएं,
0: खाएं, आम
1: तो
0: खाएं,
1: ये चीजें ले सकते हैं उसमें।
0: हाँ बिल्कुल ले सकते
1: और घर
0: हैं
1: पे जिस तरह जो भोजन हम सामान्यतः लेते हैं।
0: नेचुरली, हमें तो लिक्विड्स लेने हैं ना, फ्लूइड्स लेने हैं जो कि 3-4 लीटर मिनिमम, यदि आपको प्यास नहीं भी लगी है
1: तो भी
0: तो भी
1: आप
0: आपको पीना चाहिए,
1: लिक्विड
0: पानी
1: लें,
0: पिए,
1: पानी
0: हाँ
1: लें, सावधानी रखें। और क्या ऐसा विशेष हो सकता है जो आप कहना
0: जब भी
1: चाहें?
0: आपको कोई परेशानी ज़्यादा हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, मेरी स्किन कोल्ड हो रही है, मेरी पल्स बढ़ती नज़र आ रही है, आप सीधे सीधे आप शेडो में जाइए या AC में जाइए और वहाँ जाके अपना आराम करिए, तो उसके बाद में फिर आप जो है अपना काम कर लिए, जब आराम मिल जाए तो आराम कर लिए,
1: फिर
0: फिर काम
1: भी
0: कर
1: वो
0: लीजिए,
1: चीज़ अगर प्रोलॉन्ग करती है तो फिर किसी
0: हाँ
1: डॉक्टर की सलाह
0: कंसल्ट
1: लें।
0: लेना चाहिए,
1: हाँ
0: लेना चाहिए,
1: ऐसे में
0: हाँ
1: ऐसा लगता
0: उल्टियाँ
1: है
0: भी आती हैं कई बार,
1: उल्टियाँ।
0: उल्टियाँ भी आती हैं, मिचली भी आती है, और सर दर्द भी अच्छा खासा हो जाता है इनमें,
1: तो फर्स्ट एड में क्या आप वो कहेंगे कि लिक्विड तो हमने दे ही दिया, उसके सर पे थोड़ा गीला कर दें, साफ ही रख दें, पैरों का थोड़ा वो कर दें, इस तरह कुछ फर्स्ट एड?
0: हम लोग कहते हैं कि आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे और आपकी परेशानी बढ़ रही है, तो हम लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से आप शरीर धो दीजिए, कपड़े से धोइए, आइस पैक्स लगा दीजिए, बगली में लगा दीजिए, गर्दन के नीचे लगा दीजिए, शरीर पे लगा दीजिए, यदि आदमी कॉन्शियस है तो उसे ठंडा पानी पिलाइए,
1: जी, तो इस तरह की अगर सावधानियां रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे इस जो एक्सट्रीम हीट हो रही है इससे आप बच सकते। श्रोताओ, आज हमारे साथ थे डॉक्टर BV गर्ग साहब और जानकारी दे रहे थे इस हीट वेव और हीट स्ट्रोक के संदर्भ में, कैसे बच सकते और अगर प्रभावित होते तो कैसे इससे निकल सकते।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, बढ़ते तापमान का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर विशेषज्ञ थे डॉक्टर वाके बिहारी गर्ग, भेंट कर रहे थे OP सिंह।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है एसएम सभा का।
1: मिर्जापुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य चलाया जा रहा है। आम जनता द्वारा खुद से स्वगणना कर लेने से आपका एवं प्रगणक को सुविधा एवं समय की होगी बचत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मिर्जापुर के सभी नागरिकों से अपील किया है कि जनगणना 2027 को सटीक और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वगणना पोर्टल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए स्वगणना पोर्टल पर पंजीयन करते हुए अपने मकान की गणना की प्रविष्टि पूर्ण करें। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार।
2: स्वगणना कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से sc.census.gov.in वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हुए अपने मकान के बारे में जो उसमें प्रश्न दिए गए उनके उनका चयन करते हुए अपने उसको स्वयं गणना कर सकता है। उसके बाद जो आईडी से जनरेट होगी वो SC ID को जब प्रगणक घर पर जाएंगे तो उनको आईडी बताएंगे तो प्रगणक पर उनका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, तो जिससे एक उस समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
1: मिर्जापुर में समूह की महिलाओं को बागवानी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं को नर्सरी स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इतनी ही धनराशि समूह की महिलाओं को स्वयं लगानी होगी, जिससे समूह की महिलाएं फल सब्जी और विभिन्न प्रजाति के फूलों की नर्सरी को तैयार कर आसानी से बेच सकेंगी। इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाएं अधिक रूप से मजबूत भी होंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब ग्रामीणों को बागवानी के लिए फल फूल और सब्जी का पौधा खरीदने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं के माध्यम से एक नर्सरी स्थापित कराई जाएगी। लगभग 17 बिस्वा में स्थापित की जाने वाली नर्सरी पर कुल 22 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 50% धनराशि उद्यान विभाग से समूह की महिलाओं को अनुदान मिलेगा। वहीं शेष 11 लाख रुपए समूह की महिलाओं को खर्च करना होगा। समूह की महिलाएं शासन से नर्सरी के लिए मिलने वाली धनराशि से नर्सरी में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नर्सरी वाली भूमि के चारों तरफ बाड़ बनवा सकेंगी। इसके अलावा नर्सरी के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उसी पैसे से विकसित किया जाएगा। NRMM की इस योजना से समूह की महिलाओं को न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। मिर्जापुर के परिषदीय सहायता प्राप्त राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बनाने के बाद परोसने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। इसके लिए सभी प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भोजन बनने के बाद व परोसने से पहले प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी उस भोजन को चखेंगे, उसकी गुणवत्ता आदि की जाँच करेंगे। इसके बाद ही बच्चों को वह भोजन परोसा जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति जी ने गत दिनों मिर्जापुर में बनने वाले मंडली होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ पर्यटन वाले जनपदों में होमगार्ड विभाग का निरीक्षण गृह बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा प्रदेश के हर थाना में होमगार्ड के लिए दो दो कक्ष का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। होमगार्ड मंडली प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों के लिए 3 लाख बीमा राशि को 5 लाख रुपया कर दिया है। गत दिनों लखनऊ में आयोजित सृजन अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम में मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिद्धि के शिक्षक दयानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से निस्तारण में माह अप्रैल में मिर्जापुर को प्रदेश में जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत तौफिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश सिंह के पर्यवेक्षण

0: एम प्रभारी IGRF नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRF के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। एकीकृत शिकायत के निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2026 में जारी रैंकिंग में जनपद मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
1: मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख है सावन कुमार श्रीवास्तव का।
2: सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगहबानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन CCTV कैमरों और ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर स्थायी कैमरा और शौचालय के निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर SSP 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंजिंग रही है। सीमा पर निगहबानी और अच्छी तरह से हो सके इसके लिए पहले फेज में सीमा के कुछ चिन्हित स्थानों पर 32 की संख्या में उच्च कोटि के CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सुनने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे जिले के सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने शिरकत की और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिक्षा मित्र की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से लंबित इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। भारत की 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के आवास और कार्यालय पर स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद ने अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर जनगणना ID प्राप्त की और लोगों से मोबाइल के जरिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना था और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां से नेपाल तक गाड़ियां जाती हैं, जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN द्वारा ककरही टड़िया गायघाट सड़क का निरीक्षण किया गया। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ था। निरीक्षण के दौरान जगह जगह सड़क में पैच पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैच की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कमल किशोर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शोहरतगढ़ की टीचर्स कॉलोनी से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर पंचायत कार्यालय होते हुए शोहरतगढ़ के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दोबारा टीचर्स कॉलोनी में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल पारित न होने से आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी की। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में मत डालकर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है संकट प्राण वायुदाता का, वाचन है श्री हेमंत झा का।
1: घटते वनों के कारण देश में वन्य जीव घटते जा रहे हैं और पर्यावरण संकट लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषित पर्यावरण इन दिनों जीवन के लिए चुनौती बन रहा है। हमारे देश में भी वन संपदा की कमी नहीं है। यहाँ लगभग 657 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है, जो कि कुल जमीन का 22.7% है। हम सभी जानते हैं वन भूमि पर उद्योग धंधों तथा मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अवैध कटाई आदि वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारण हैं। आज से कई सौ वर्षों में तैयार हुए जंगलों को काट देने से एक पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। जंगल वस्तुतः एक ऐसा जीवित समुदाय होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन बिताते हैं। पिछले कुछ दशकों में जिस तरह मनुष्य ने अपने लालच की पूर्ति के लिए जंगलों का वध करना शुरू किया है, उससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना जैसी विकट समस्याएं प्रारंभ हुई है। हमारे देश में जंगलों के संरक्षण के लिए सक्रिय एक संस्था की माने तो वर्तमान समय में किसी वयस्क व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वह उसे लगभग 16 बड़े बड़े पेड़ों से मिल सकती है। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से उसकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। हमारे देश में प्रति 36 व्यक्तियों के लिए मात्र एक पेड़ है। कोलकाता जैसे महानगर के लिए यह आंकड़ा अत्यधिक चिंताजनक है, 15,000 लोगों पर मात्र एक वृक्ष। हालात दिन ब दिन गंभीर हो रहे हैं। हमें भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आज से ही सोचना प्रारंभ करना होगा। सड़क निर्माण, अवैध खनन, औद्योगिक विकास एवं लकड़ियों की मांग हेतु आज यह धरोहर भी विनाश की कगार पर खड़ी है। यह गंभीर स्थिति हमारी ही नहीं वरन पृथ्वी के प्रत्येक कोने की है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मानव जिस निर्ममता से पृथ्वी को जंगल विहीन कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में जंगल संग्रहालय की वस्तु बनकर रह जाएंगे। श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम अपने देश की राष्ट्रीय निधि को बचाएं और इनका संरक्षण करें। हमें वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। हमें हमारे आसपास की बेकार पड़ी भूमि पर न केवल वृक्ष लगाने चाहिए बल्कि उनकी बड़े होने तक देखभाल भी करनी चाहिए। हमारी संख्या करीब 7 अरब है। अगर एक एक पेड़ भी लगाएं तो पृथ्वी को पुनः हरा भरा बनाया जा सकता है। ये पेड़ व जंगल कुदरत द्वारा दिए गए अनुपम उपहार हैं, जो हमें जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम समस्याओं से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। विषय था संकट प्राण वायु दाता का। वाचन था श्री हेमंत झा का।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा, विषय सामाजिक बुराइयां, प्रस्तुति सत्यव्रत सिंह की।

से समाज उच्च सांस्कृतिक और भौतिक विकास का केंद्र बिंदु बन सकता है। समाज में बहुत सी सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवाओं के विवाह की समस्या। विधवा विवाह समाज विकास में सहायक हो सकता है, बापू इसकी हिमायत करते थे। एक बार एक बंगाली स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बापू को रोष भरा पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, आपने मद्रास के विद्यार्थियों को विधवा लड़कियों से शादी करने की सलाह देते हुए जो भाषण दिया है, उससे हम भयभीत हो रहे हैं। विधवाओं के जिस आजीवन ब्रह्मचर्य पालन के कारण भारत की स्त्रियों को संसार में सबसे बड़ा बल्कि ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है, उसके पालन करने की वृत्ति को ऐसी सलाहें नष्ट कर देंगी। और आज उन्हें ब्रह्मचर्य के द्वारा एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त करने का जो अवसर सुलभ है, उसे समाप्त कर देंगी। इस प्रकार विधवाओं के प्रति ऐसी सहानुभूति दिखाना उनकी कुसेवा होगी, और कुमारियों के प्रति, जिनके विवाह का प्रश्न आज बड़ा पेचीदा और मुश्किल हो गया है, यह एक बड़ा अन्याय होगा। विवाह संबंधी आपके इन विचारों से हिंदुओं के आत्मा के देहांतरण, पुनर्जन्म और मुक्ति के सिद्धांत की इमारत ढह जाएगी, और हिंदू समाज भी पतित होकर उसी स्तर पर आ जाएगा जिस स्तर पर वे दूसरे समाज हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। हिंदू समाज को अहिल्याबाई, रानी भवानी, बेहुला, सीता, सावित्री, दयमंती के उदाहरणों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, और हमें उसको उन्हीं के आदर्शों पर चलाना चाहिए। बापू ने इसके प्रत्युत्तर में लिखा, इस रोष भरे विरोध से न तो मेरे विचार बदले हैं और न मुझे कोई पश्चाताप हुआ है। कोई भी विधवा जिसमें इच्छा शक्ति है और जो ब्रह्मचर्य को समझती है तथा उसका पालन करने को कटिबद्ध है, मेरी इस सलाह से अपना इरादा नहीं छोड़ देगी। परंतु यदि मेरी सलाह पर अमल किया जाएगा तो उससे उन छोटी उम्र की लड़कियों को जरूर राहत मिलेगी जो शादी के समय शादी किसे कहते हैं यह भी नहीं समझती। उनके संबंध में विधवा शब्द का प्रयोग इस पवित्र शब्द का दुरुपयोग है। मुझे पत्र लिखने वाले महाशय के मन में जो ख्याल आए हैं, उसी ख्याल से तो मैं बिल्कुल देश के युवकों को या तो इन तथाकथित विधवाओं से शादी करने की या बिल्कुल ही नहीं करने की सलाह देता हूँ। इस प्रकार की पवित्रता की रक्षा तभी हो सकेगी जब हम बाल विधवाओं का अभिशाप दूर कर सकें। ब्रह्मचर्य के पालन से विधवाओं को मोक्ष मिलता है, इसका तो कोई अनुभव में कोई प्रमाण नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त और भी बहुत सी बातों की आवश्यकता होती है, और जो ब्रह्मचर्य जबरदस्ती लादा गया है उसका कुछ भी मूल्य नहीं। उससे तो अक्सर गुप्त पाप होते हैं जिससे उस समाज की नैतिक शक्ति का ह्रास होता है जिसमें पाप होते हैं। पत्र लेखक महाशय को ये जान लेना चाहिए कि मैं अपनी जानकारी के आधार पर ये सब बातें लिख रहा हूँ। यदि मेरी इस सलाह के परिणाम स्वरूप बाल विधवाओं से न्याय हो सके और फलतः कुमारियों को पुरुष की विषय लालसा से बेच देने के बदले उन्हें विवाह से पूर्व व्यय और वृद्धि की दृष्टि से पूरा विकास प्राप्त करने की सुविधा दी जा सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। विवाह के बारे में ऐसी कोई मान्यता नहीं है जो आत्मा के देहांतरण, पुनर्जन्म और मुक्ति से असंगत हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन करोड़ों हिंदुओं के बीच जिन्हें हम दंभ पूर्वक निम्न श्रेणी का कहते हैं, विधवाओं के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जब वृद्ध विधुरों के पुनर्विवाह से उस मान्यता में कोई बाधा नहीं पहुँचती, तो जिन लड़कियों को गलत तौर पर विधवा कहा जाता है उनके वास्तविक विवाह से उस भव्य सिद्धांत में कैसे बाधा पहुँचती है। पत्र लेखक की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आत्मा का देहांतरण और पुनर्जन्म मेरे लिए कोरे सिद्धांत ही नहीं बल्कि ऐसी वास्तविकताएं हैं जैसी कि प्रतिदिन सूर्य का उदय होना। मुक्ति एक ऐसा सत्य है जिसे प्राप्त करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी मुक्ति चिंतन ने मुझे बाल विधवाओं के प्रति किए जाने वाले अन्याय का स्पष्ट भान कराया है।
अपनी पुरुष तत्वहीनता के कारण हमें

सीता तथा उन अन्य अमर देवियों के साथ जिनके नामों का उल्लेख पत्र लेखक महाशय ने किया है, आज की इन पीड़ित प्रताड़ित बाल विधवाओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अंत में, यद्यपि हिंदू धर्म में सच्चे वैधव्य का गौरव गाया गया है और ठीक ही किया गया है, फिर भी जहां तक मैं मानता हूं, इस विश्वास के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वैदिक काल में विधवाओं के पुनर्लग्न पर संपूर्ण प्रतिबंध था। परंतु सच्चे वैधव्य के विरुद्ध मेरी ये लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो उसकी उस भद्दी नकल के खिलाफ है जो अत्याचार का एक साधन बनी हुई है। बेहतर रास्ता तो यह है कि जैसी लड़कियां हमारे ख्याल में हैं, वैसी लड़कियों को विधवा माना ही नहीं जाए, और जिस हिंदू में असहायों के पक्ष से खड़े होने का कुछ भी साहस होगा, वह उन्हें इस असह्य स्थिति से छुटकारा दिलाना अपना कर्तव्य मानेगा। इसके लिए मैं विनम्रता पूर्वक किंतु जोर देकर प्रत्येक हिंदू युवक को फिर से यही सलाह देता हूँ कि वह सिवाय इन कुमारियों के, जिन्हें गलती से विधवा कहा जाता है, और किसी से शादी न करें।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, विषय था सामाजिक बुराइयां। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे दान बिहारी ब्रजवासी से भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे दान बिहारी ब्रजवासी के गाए कुछ भजन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

यातायात नियमों का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। गंदगी से प्रदूषण फैलता है, इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओं, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ? कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
3: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है

0: audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया

0: है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे,

0: वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही, उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं, वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सूबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सूबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।

0: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह
3: और सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
4: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand. But nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
5: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter,

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

जी हाँ साथियों, अपने तो अपने होते हैं। आपको बताते चलें, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसका उद्देश्य परिवार के महत्व को उजागर करना, परिवार से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि वो सुकून भरी छांव है जहाँ थकान भी खुशी में बदल जाती है।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी और इसे पहली बार 1994 में मनाया गया था। इस दिवस की स्थापना समाज में परिवारों की मूलभूत भूमिका को मान्यता देने और दुनिया भर में परिवारों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी।

श्रोताओं, कुछ मूलभूत मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, परिवार में प्रेम, ईमानदारी और सम्मान। आपको बता दें, परिवार के हर रिश्ते की अपनी एक अलग अहमियत होती है, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, दादा दादी का हो, माता पिता का हो या फिर पति पत्नी का।

साथियों, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, जिसकी मुख्य विशेषताएं भावनात्मक जुड़ाव, साझा निवास, आर्थिक सहयोग और सामाजिक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व हैं। यह रक्त या विवाह संबंधों पर आधारित होता है और सदस्यों को सुरक्षा व पहचान प्रदान करता है, भले वो दूर देश बसे हों।

सच है दोस्तों, जीवन में रिश्ते का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है और हर दुख में अपना सच्चा रिश्ता ही काम आता है। तो आज आप फिल्म संगीत में जो गाने सुन रहे थे वो हमने लिए थे अपने क्या कहना, हम साथ साथ हैं, सौदागर और नाम फिल्म से। तो इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है देवराज कृष्ण दीक्षित की।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी,
3: दीक्षित सर को मेरा प्यार भरा सब प्रेम भरा नमस्कार।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: और सर कैसे, हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
2: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
3: हाँ मैं बढ़िया हूँ साहब, और अपनी और आपकी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम आप ऐसे ही बने रहें
2: जी,
3: ऐसे हमें कार्यक्रम आप सुनवाते रहें। बहुत अच्छा लगता है साहब आपका कार्यक्रम जो है
2: जी, जी।
3: आकाशवाणी,
2: आपका परिचय हो जाए
3: सर। मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ, गांव उस पार से सर।
2: स्वागत है यादराम जी, आज बताइए क्या फरमाइश है?
3: सर मैं दो लाइन बोलना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो।
2: बिल्कुल।
3: गिरिराज वास में पाऊँ ब्रज तज पे कुंठ न जाऊं
2: जी।
3: अब हमारे जो है अधिक का महीना आ रहा है, अमावस्या से अधिक का महीना लग जाएगा और गिरिराज महाराज जी के हमारे ब्रज में अब जय जयकार होगी और बहुत श्रद्धालु आएंगे, कुछ बाहर से भी आएंगे, कुछ हमारे इधर से भी, सब लोग परिक्रमा करेंगे। अपनी अपनी जो आनंद ब्रज में है वो बैकुंठ में भी नहीं है।
2: ब्रज रज की महिमा अपरंपार है
3: जी। जी जी सर।
2: यादराम जी, फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
3: फरमाइश सर जी रहेगी, संजोग फिल्म का गाना है यशोदा का नंदलाला।
2: सुनवाते हैं यादराम जी आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: वैसे नमस्कार आपके लिए, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।
2: नमस्कार, राधे राधे,
3: जय श्री कृष्णा।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है इंद्रभान जी।
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, ड्यूटी पीरियड में हूँ सर, नर्सरी के बीच में हूँ। यहाँ तो गर्मी धूप काफी बढ़ा है सर, और यहाँ पर छाया में खड़ा हूँ, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है।
0: जी जी, अब तो गर्मी बढ़ेगी।
1: जी सर, यहाँ हवा चल रहा है, छाया में खड़ा हूँ तो एकदम बहुत अच्छा हवा चल रहा है सर, उस पूरे एरिया में।
0: जी जी, आप ड्यूटी पीरियड में हैं इसलिए जल्दी से फरमाइश बता दीजिए अपनी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है गैम्बलर।
0: जी।
1: गीत के बोले चूड़ी नहीं दिल मेरा, देखो ना देखो ना, गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर। सबसे पहले गीत आपको के निर्देशकता को कृपा श्रोता को आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: मखमली आवाज के जादूगर आदरणीय देवराज कृष्ण दीक्षित जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: जी धन्यवाद सर। मैं आपका जाना पहचाना नियमित श्रोता ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम मजला राणा सिहोरा।
0: कैसे हैं चौधरी साहब?
1: महोदय हम लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप बताइए, आप और समस्त आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं।
1: जी ऊपर वाले की।
0: जी बताइए, आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: महोदय आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम काबिले तारीफ हैं और बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी प्रसारण कर्मियों को और उच्च अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं।
1: सर समझ में नहीं आता कि जब दो दिल एक दूसरे से प्रेमी के रूप में मिलते हैं तो ये दुनिया वाले क्यों जलते हैं।
0: बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप।
1: कहने का मतलब ये है कि आगे का हाल आप इस गीत में सुने। फिल्म का नाम है लैला मजनू।
0: जी
1: लता जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत है और गीत के बोल हैं, उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने।
0: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया आपका भी सर हमारी कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: ग्राम नंगला कात्यानपुर शरणाबाद जिला कात्यान उत्तर प्रदेश से रूप सिंह से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: रूप सिंह जी, स्वागत है आपका
1: जी। और कैसे हैं आकाशवाणी परिवार में सभी लोग, और आप कैसे हैं?
0: हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपके कैसे हैं हाल चाल?
1: बढ़िया है सर जी।
0: परिवार में सब ठीक है?
1: जी बिल्कुल ठीक है, आपसे बात हो रही है।
0: और क्या चल रहा है आपका?
1: जी खेती बाड़ी का काम है सर जी, तो अभी मूंगफली और मक्का है जो लगी हुई है, तो उसकी देखभाल चलती है, सिंचाई होती है।
0: जी जी बताइए, आज रूप सिंह जी कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म है हमराज जो पुरानी वाली
0: जी,
1: उसका कोई सा भी सॉन्ग सुनवा देना।
0: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर हमराज फिल्म से ये गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी।
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: कैसे हो आप?
1: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: जी सर, मैं भी अच्छा हूँ सर। और संपूर्ण आकाशवाणी टीम कैसी है हमारी?
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
0: सर करे आप सभी लोग ऐसे ही अच्छे रहें।
1: आप कौन साहब बोल रहे हैं?
0: सर मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़िंग से सर।
1: जी यादव जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आज?
0: जी सर, फिल्म का नाम तो नहीं पता है, लेकिन गाने को बोल रहे हैं, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है।
1: सुनवाते हैं लव स्टोरी फिल्म से ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी।
0: थैंक यू सर हमारी कॉल शामिल करने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

चित्र लेखा इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, स्वर थे मोहम्मद रफी के। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज दिन में कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हम आपसे चर्चा करेंगे डीजल और पेट्रोल की बचत के संदर्भ में। तो आपके विचार, आपकी अभिव्यक्ति और आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें रहेगी प्रतीक्षा। तो जल्दी से अपने एसएमएस टाइप करना शुरू कर दीजिए। विषय आपको बता ही दिया है, डीजल और पेट्रोल की बचत कैसे करें, और अपने एसएमएस व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचाइए, और कार्यक्रम में आप उन प्रतिक्रियाओं से अवगत होंगे जो हम एक दूसरे के साथ बांटने से अपने देश के लिए एक विशेष अभियान में अपना सहयोग कर सकते हैं। तो इस अभियान में आपको और हमको सभी को सहयोग करना है, और इस प्रक्रिया से सभी को लाभान्वित भी करना है। तो आपके विचार हमारे लिए बहुत

श्रेयस कर होंगे, अपने एसएमएस जल्दी से हम तक जरूर पहुंचाइए 94-122-25-575 पर, और अपने जो आप डिटेल लिखते हैं उसमें बहुत नीचे जो आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं उसे पूरा एड्रेस ना लेकर आप सिर्फ अपना नाम और अपने गांव का नाम या फिर शहर का नाम और साथ में बस केवल स्टेट का नाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं मोहल्ला गली वो सब उसमें इंक्लूड ना करें। तो आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें रहेगी प्रतीक्षा, और अब आनंद लेते हैं एक और गीत का।

किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म याराना में। श्रोताओं, हम आपको बता दें, कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में दिन में 12 बजे हमारा आज का विषय रहेगा, डीजल और पेट्रोल की बचत कैसे करें। तो आप क्या कुछ करते हैं, कैसे डीजल और पेट्रोल की बचत करते हैं और आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी हमें प्रतीक्षा रहेगी कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। तो श्रोताओं, आपको अब ये शिकायत नहीं करनी है कि आपने हमारा नाम नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं उन सभी का नाम जरूर पढ़ूंगी जो आज के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो सभी के एसएमएस शामिल होंगे, मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं की रहेगी प्रतीक्षा। नंबर वही 94 122 25 575।

जूली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और उषा मंगेशकर के स्वरों में। श्रोताओं, हम आपको बता दें कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में आज उन्हीं एसएमएस को हम शामिल करेंगे जो हमारे विषय से संबंधित विचार लिखकर हम तक पहुंचाएंगे। आज का हमारा विषय है डीजल और पेट्रोल की बचत कैसे करें, तो इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में।

कविता कृष्णमूर्ति को आपने सुना फिल्म परिवार में। इस गीत के साथ ही भक्ति फिल्म संगीत का कार्यक्रम अर्पण अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बात और SMS।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो हर घर, हर जेब और पूरे देश से जुड़ा है, डीजल और पेट्रोल की बचत। जैसा कि हमने कार्यक्रम के पूर्व में भी आपको जानकारी दी थी कि आज का हमारा जो विषय रहेगा डीजल और पेट्रोल की बचत पर आधारित प्रतिक्रियाओं से संबंधित रहेगा। जो श्रोता इस संदर्भ में हमें प्रतिक्रिया भेजेंगे, हम उन्हें अपने कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। जैसे कि हम ईंधन की अगर हम बात करें तो श्रोताओं, ईंधन केवल गाड़ी को नहीं जलाता, ये ईंधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आने वाले भविष्य को भी गति प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम कितना ईंधन बचा सकते हैं? इसको थोड़ा सा अनुभव करके देखिए। एक सीन मैं आपके साथ में क्रिएट कर रही हूं और आप बस उसको थोड़ा सा अनुभव करके देखिएगा। सुबह का समय, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, कहीं बाइक बेवजह स्टार्ट खड़ी हुई है और कहीं कार तेज रफ्तार में धुआं छोड़ रही है, और दूसरी ओर एक व्यक्ति अपनी बाइक का इंजन रेड लाइट पर बंद कर देता है। तो किसी ने पूछा, साथ में खड़े हुए किसी व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई इतनी देर में क्या फर्क पड़ेगा? तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, फर्क पड़ता है, क्योंकि एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद से ही पेट्रोल बचता है। तो सबसे पहली बात तो हम जब भी जहां भी जा रहे हो, डीजल पेट्रोल की बचत हम इस संदर्भ में भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां ट्रैफिक जाम में हम कई बार फंस जाते हैं लेकिन हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं, या फिर जहां चौराहों पर हमें रुकना होता है, हमें प्रतीक्षा करनी होती है कि हमें कब सिग्नल क्लियर मिलेंगे, उस समय भी हम अपने वाहन को बंद रख सकते हैं। दूसरी चीज इस संदर्भ में आती है साइकिल। जी हाँ, आजकल साइकिल का प्रयोग लोगों ने बहुत कम कर दिया है, जबकि साइकिल हमारे लिए बहुत बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि देखिए, डीजल और पेट्रोल की बचत तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाए रखेगी, क्योंकि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपका जो पैर है, आपका पूरे हाथ है, मतलब सारी चीज, एक पूरा एक बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज इसको माना गया है। कई लोग बाहर नहीं चला पाते तो घर में भी साइकिल की जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, घर में मंगाकर साइकिल। तो जब भाई घर में उसके लिए आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो एक बढ़िया सी साइकिल ले लीजिए अपने बजट के अनुसार, और बस आसपास में अगर कहीं भी छोटा मोटा काम करने जाना है, उठाइए साइकिल और बस निकल पड़िए। तो देखिए, हमारे एक श्रोता ने हमें SMS किया है। ये श्रोता है कल्याण मुंबई से, किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले लिखते हैं, पेट्रोल की बचत के लिए हमें टू व्हीलर को घर में रख के साइकिल का इस्तेमाल ऑफिस जाने के लिए हम कर रहे हैं। ओ बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ सुझाव नहीं दिया बल्कि उस पर आप काम भी कर रहे हैं। अगला SMS हम अपने कार्यक्रम में शामिल

कर रहे हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा का, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। आपने टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से हमें SMS भेजा है। आज के समय में ईंधन की बचत बहुत आवश्यक है। पेट्रोल और डीजल जैसे संसाधन सीमित हैं, इसलिए हमें उनका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक वाहन प्रयोग कम करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन अपनाना

सार्वजनिक परिवहन अपनाना, वाहन की नियमित सर्विस कराना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना ईंधन बचाने के अच्छे उपाय हैं। ईंधन की बचत से न केवल धन की बचत होती है बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। वाह, मजा आ गया आपका SMS पढ़ के, क्योंकि आपने तो गागर में सागर वाली बात कर दी। इतनी सारी जो बातें हैं वो सारी एक अपने SMS में लिख तक हम तक पहुंचा दी हैं। और देखिए और भी SMS हम तक आ रहे हैं। ये SMS हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा और लोकेश जोशी ने। रश्मि मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप लिखते हैं कि हमें डीजल और पेट्रोल की बचत करनी चाहिए। कोई भी दूर का काम या पास का काम पैदल चलें तो साइकिल का प्रयोग करें। कल की खपत आज की बचत। वाह, मजा आ गया। हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में लगातार शामिल हो रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और श्रोता ने हमें लिख कर भेजा है, लिखने वाले श्रोता है मधुबन भी बिहार से, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, बिटिया, चुलबुल रानी। साइकिल का प्रयोग करके हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। तो भाई साइकिल की बात हो रही है तो साइकिल का एक प्यारा सा गीत भी मैं सोच रही हूँ आपको सुनवाई दूँ।

0: बोलो चलना कहाँ है?
1: यह सुबह साया है दुर्गापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और सुशील येले का। शहरी वर्णिर अकोला से हैं अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। आप लिखते हैं, पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए गाड़ी को मध्यम गति 40 या 60 आप उसके समकक्ष ही इस गति पर ही अपनी गाड़ी को चलाएं। टॉप गियर का उपयोग करें, ट्रैफिक में इंजन बंद कर दें, नियमित सर्विसिंग, सही टायर प्रेशर और अनावश्यक वजन कम रखने से भी ईंधन की खपत काफी कम की जा सकती है। और इन सब बातों पर गौर करें तो ईंधन की बचत हो सकती है। बढ़िया।

ऐसा ही एसएमएस हमें भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक, गाविया मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से हमें लिख रहे हैं। लिखते हैं, होस्ट मैडम जी, मैं तो हर रोज साइकिल का इस्तेमाल करता हूं जी। मैं 10-12 किलोमीटर चला लेता हूं। मेरी आयु 63 वर्ष की है और बाइक कम चलाता हूं जी। बहुत बढ़िया, तो आपका वो बिल्कुल स्वास्थ्य भी एकदम बढ़िया हो रहा होगा और अच्छी बात है कि 10-12 किलोमीटर साइकिल चलाना मायने रखता है और वो भी आपने जो अपनी उम्र बताई है उसके हिसाब से, तो बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता और भी शामिल हो रहे हैं।

एक और श्रोता ने बड़ा प्यारा सा एसएमएस हमें भेजा है और लिखने वाले ये श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, रितिका खोरवाल और भानु प्रकाश लिखते हैं, देखो जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे पास कोई गाड़ी है ना बाइक है, तो पेट्रोल डीजल की हमारे पास तो बचत ही बचत हो रही है क्योंकि एक एक बूंद बचाना जरूरी है। तो भाई ये भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं के साथ में होता होगा जिनके पास में कोई साधन नहीं है और उन्हें सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उनका प्रयोग करके ही अपने गंतव्य स्थल तक जाना होता है। ऐसे में जिनके साथ परिस्थिति ऐसी है उन्हें तो करना ही करना है, बाकी कार पूल भी करनी है, कैसे करनी है वो भी हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे।

जी हाँ श्रोताओं, आपके एसएमएस हमें लगातार मिल रहे हैं और ये एसएमएस आया है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। लिखते हैं, आज के हालात के हिसाब से अपने घर में चाहे कार हो या बाइक, ये छोड़कर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और इससे हमारे पेट्रोल की बचत होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। बहुत सही बात आपने लिखकर भेजी है। और देखिए, ये एक और एसएमएस गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन का आया है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना हमें एसएमएस भी

रहे हैं। होस्ट रश्मि जी, साइकिल और पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शुगर नहीं होगी। भाई आजकल तो ये एक आम बात हो गई है, आपने बहुत सही पॉइंट आपने पकड़ा है। शुगर तो भाई शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन बीमारियां हो गई हैं, तो भाई हम बीमारियों से बचे रहेंगे। और साथ ही आप लिखते हैं पेट्रोल की तो बचत होगी ही होगी, क्योंकि जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और उसके बाद में भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि उन सुविधाओं का बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर मतलब उपयोग कर दें, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप सही बना रहेगा। तो बहुत सही बात है। और देखिए एक और हमारे श्रोता हमारे साथ में जुड़े हैं और लिखते हैं, दीदी हम मोटरसाइकिल बहुत ज़रूरी काम होता है तब ही चलाते हैं, खेत में साइकिल से ही आना जाना करते हैं दीदी। और ये समय समय भेजा है मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख सागिर और शेख वजीर और सोहिल शेख ने। और ये श्रोता है हमारे चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, लिखते हैं पेट्रोल डीजल तो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन हम चाहें तो इसमें बचत कर सकते हैं। रेड लाइट पर हमें गाड़ी बंद कर देनी चाहिए और क्लच का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो बचत कर सकते हैं। बचत करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है, बिल्कुल बनता है। यहाँ मेरा गाना सुनाना भी बनता है, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कहा था आपसे कि कारपूल के बारे में, मान लीजिए एक ही गली में या गली के आसपास के कुछ लोग हैं जिनको सुबह ऑफिस या कहीं और जहां भी उनका गंतव्य स्थल है, मतलब सेम या रास्ते में उनको ड्रॉप किया जा सकता है, तो हम इस बहाने से हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों को या फिर कुछ लोगों का ऑफिस होता है और उनको जैसे किसी का मिड में घर पड़ता है, किसी का और कहीं रास्ते में पड़ता है, तो हम गाड़ी से उन लोगों को अपने साथ में पिक करते हुए और जब गंतव्य एक है तो हम एक साथ आ सकते हैं जा सकते हैं। यानी चार लोग अगर अलग अलग गाड़ी या बाइक लेकर ऑफिस या कहीं और जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि वो चार लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचे। इससे आपका डीजल पेट्रोल तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ जो हमारे रिश्तों में हम लोग टाइम स्पेंड करना जो भूल गए हैं ना, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार भी हम एक साथ साझा कर सकते हैं। गाड़ी साझा करने से बहुत सारे लाभ होंगे, आपका आर्थिक रूप से भी उसमें जो आपका बजट जो आजकल बढ़ता जा रहा है कि भाई उसमें भी आपको एक राहत मिलेगी, क्योंकि उसमें आप शेयरिंग के हिसाब से, कभी किसी ने डीजल पेट्रोल का खर्चा, कभी किसी ने, आप लोग उसमें भी शेयर कर सकते हैं और बड़े आराम से अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। तो ये SMS हमें भेजा है रश्मि झरना भरत कुमार ने राजकोट से, ईंधन पानी पैसा का बचत सेव करना अब काफी आवश्यक है और इनके लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए जी। और देखिए बहुत सारे और श्रोता हमारे साथ में जुड़े हैं। ये हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर, लिखते हैं ईंधन की बचत से न केवल हमें लाभ होगा बल्कि इससे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा, क्योंकि यह हवा में विषाक्त पदार्थों की संख्या को कम करेगा और हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को उपभोग करने के लिए बेहतर और सुरक्षित ईंधन खोजने का समय देगा। पेट्रोल बचाने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने टायरों को भरा रखना। वाहन चलाते समय उचित गति बनाए रखें, खुली सड़कों से दूर रहे, एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलते रहे। बंद एयर फिल्टर इंजन में वायु प्रवाह को कम कर देते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है। तो बहुत बारीकियां होती हैं जिन्हें हर व्यक्ति को नहीं पता होता, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम में आप सभी के विचार आपसे मांगे हैं कि भाई आप क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे तो सबको उस संदर्भ में जानकारी मिलेगी। यह समय समय भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का। बहुत लंबा SMS है लेकिन मैं जल्दी जल्दी से पढ़ती हूँ।
मैडम जी नमस्कार, आज आपने बेहतरीन विषय रखा है, डीजल और पेट्रोल।

की बचत। अब एक तो वैश्विक युद्ध की समस्या के चलते भारत ही में नहीं, सभी जगह डीजल और पेट्रोल की जो कमी आ गई है उससे समस्या का निदान यही है कि हमें डीजल और पेट्रोल की बचत करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही उसको खर्च करना है। जैसे कि आपने शुरू में उदाहरण दिया था, यथासंभव हम अपनी बाइक को अपनी गाड़ी को चालू न रखें और जो रोड के नियम हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो हमें लाभ हो सकता है। बार बार अनावश्यक रूप से अपनी गाड़ी को दौड़ाना या छोटे मोटे कामों के लिए गाड़ी लेकर बाहर निकलना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे ईंधन की ज्यादा खपत होती है। छोटे छोटे काम के लिए हमें पैदल चलकर भी उस काम को अंजाम दे सकते हैं। साइकिल के बारे में भी आप बता रहे हैं, तो साइकिल का इस्तेमाल भी अच्छा होता है, अपना काम भी हो जाता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो इस तरह से शरीर की वर्किंग भी हो जाती है और काफी छोटी छोटी बातें हैं जिससे ईंधन बचाया जा सकता है। कहीं दूर की यात्रा करनी होती है तो हम मुसाफिर यात्री सवारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम थोड़ी सी परेशानी उठाएंगे, फायदा हम सभी को ही होगा। जैसी स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमें हानि होती है और महंगाई का सामना भी करना पड़ता है। बहुत ही प्यारा सा SMS आपने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये SMS हमें भेजा है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र के इन श्रोताओं ने, सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजने और निवृत्ति अडोकर ने, ईंधन बचाने के लिए धीमी और स्थिर गति से वाहन चलाएं, अचानक ब्रेक और एक्सीलेटर से बचें, टायर का हवा का दबाव सही रखें, अनावश्यक वजन और इंजन चालू रखना बंद करें, समय पर सर्विस कराएं, शॉर्ट ट्रिप के बजाय पैदल या साइकिल का उपयोग करें। बढ़िया बात। और ये SMS हमें भेजा है क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी ने, फजिलका पंजाब से। मैडम रश्मि जी, हम सभी श्रोताओं को धन्यवाद करते हैं कि पेट्रोल की बचत करने के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहे हैं और तंदुरुस्त रहने की भी। बहुत बढ़िया, और आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला SMS सुनवाने से पहले हम सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

एक और श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमें भेजा है। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, पूजा सोनी, कंचन, कुसुम, जूली और जगदीश जौहरी। लिखते हैं, रश्मि जी, हमने तो बैटरी वाली बाइक खरीदी है और उस पर ही जाते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी ही छोड़ दी है ताकि बचत हो।

ये SMS में भेजा है गांव पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला। आप लिखते हैं, आज के दौर में पेट्रोल और डीजल की बचत करना हम सभी के लिए जरूरी है। गाड़ी जब जरूरत हो तभी चलाएं और हम सभी को ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए।

ये SMS आया है हमारे पास में रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू का। लिखते हैं, मेरी उम्र 55 साल है और मैं दिल्ली में 2 से 3 किलोमीटर तो साइकिल रेगुलर चलाता ही हूँ, और साइकिल चलाने से मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया है। तो बढ़िया, आपको शुभकामनाएं, ऐसे ही साइकिल चलाते रहिए और ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का, और इस बहाने से पर्यावरण भी प्रदूषण से बचेगा। और हमारे साथ कुछ और श्रोता भी कार्यक्रम में जुड़े हैं जिनके SMS हम शामिल कर रहे हैं। ये हैं हमारे श्रोता गांव जाखोद राजस्थान से, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। लिखते हैं, दीदी कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी अपने दैनिक जीवन में पैदल चलकर और साइकिल के द्वारा अपने कार्यों को निपटाने की कोशिश करते हैं, और इस बहाने से हम भी थोड़ा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं प्रमिला सिंह, हेमा और अंतरा सिंह। आप लिखते हैं, पेट्रोल बचाने के लिए पैदल या साइकिल की सवारी हम भी करते हैं। और ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट, जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, डिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। लिखते हैं कि हम डीजल पेट्रोल की बचत करने के लिए ज़्यादातर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और देखिए, ये SMS हमें भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, आम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़। आप सभी भी सार्वजनिक वाहन के प्रयोग की बात अपने SMS में हमें लिखकर भेज रहे हैं, और कुछ और श्रोताओं ने भी हमें SMS किए हैं। लेकिन आप भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण और संस्कृति पौरुष बेंगलुरु से हमें SMS भेजे हैं। डीजल और पेट्रोल की बचत वर्तमान में अति आवश्यक है और इसमें हम सभी को निरंतर प्रयास करने होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें, आसपास जाने के लिए पैदल जाएं या साइकिल से जाएं, और साथ ही साथ कारपूल भी करें। तो देखिए, बहुत अच्छे अच्छे SMS आप सभी ने इस कार्यक्रम में भेजे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम में फिर से आपसे किसी नए विषय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। कलाकार हैं पूनम।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मेरे नैनन में श्याम रंग छाए गयोरी। अभी आप सुन रहे थे ये लोक भजन, और आइए ऐसा ही एक और प्यारा सा लोक भजन सुनते हैं। स्वर हैं पूनम के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत, कलाकार थी पूनम। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री

0: पास अराक्षी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्षी की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम वनितालोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ रहेंगी प्रियंका खंडेलवाल। चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें। वार्ताकार होंगी श्वेता कुलश्रेष्ठ। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 1:45 पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर कार्यक्रम

युववाणी के साथ। आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा परिचर्चा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार। प्रतिभागी होंगी प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर अनीता गुप्ता और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह।

गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर। संध्या 7:05 पर सुनिएगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज नवकथा किस्मत को लेखो। कहानीकार होंगे शिवदत्त चतुर्वेदी। संध्या 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम शाम सुहानी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात्रि 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का आधारित कार्यक्रम नवरंग आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दीपाली जैन से कुछ भजन और आप सुनेंगे गुलाम साबिर के स्वर में कुछ गजलें। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद राशिद हुसैन खां का ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप संवेद सरों में देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहनी सुनेंगी कार्यक्रम वनितालोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हैं प्रियंका खंडेलवाल।

वनिता लोक सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को प्रियंका खंडेलवाल का नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे दिवस को मनाने की जिसमें कि साथ रहने पर खुशियां चारों ओर बिखर जाती हैं, जिनके बिना एक पल भी रहना मुश्किल होता है, और वह है परिवार। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाने की, जिसे पूरा विश्व हर वर्ष आज ही के दिन यानी 15 मई को मनाता है। इस वर्ष यह दिवस परिवार असमानताएं और बाल कल्याण थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परिवार के महत्व को समझाना, पारिवारिक मूल्यों को सहेजना और समाज में परिवार की भूमिका को मजबूत बनाना है। बहनों, परिवार यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह छाव है जहां हमें सुरक्षा मिलती है, अपनापन मिलता है और जीवन जीने का साहस मिलता है। जब हम छोटे होते हैं तब परिवार हमें चलना सिखाता है, और जब जीवन की कठिन राहों में हम थक जाते हैं तब यही परिवार हमें संभलना भी सिखाता है। कहा भी गया है, घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है। आज के आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक क्लिक से जोड़ दिया है, लेकिन विडंबना यह है कि इस दौड़ में

अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही बैठने का समय कम हो रहा है और भावात्मक दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यह याद दिलाता है कि जीवन की असली खुशी रिश्तों में है, अपनों के साथ बिताए गए समय में है। परिवार समाज की पहली पाठशाला होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में बोलना, चलना, व्यवहार करना और संस्कार सीखता है। माँ हमें प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाती हैं, पिता संघर्ष और जिम्मेदारी का अर्थ समझाते हैं, दादा दादी और नाना नानी अपने अनुभवों से जीवन की सीख देते हैं। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जहाँ कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं, और यही भारतीय जो परिवार है उसकी पहचान रही है। हालांकि बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों की संख्या कम हुई है और एकल परिवार बढ़े हैं, लेकिन परिवार का महत्व आज भी उतना ही है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि परिवार केवल अधिकारों का नहीं बल्कि कर्तव्यों का भी नाम है। परिवार में प्रेम तभी बना रहता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करें, संवाद बनाए रखें और छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों में दूरी ना बनने दें। कई बार हम अपने काम और व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि परिवार को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन बहनों, याद रखिए, जीवन की सबसे अनमोल यादें परिवार के साथ बिताए गए पलों से बनती हैं। आज के इस अवसर पर हमें संकल्प लेने चाहिए कि हम अपने परिवार को समय देंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बच्चों को संस्कार देंगे और परिवार से प्रेम करेंगे, परस्पर विश्वास और अपनापन बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के कार्यक्रम की पहली चर्चा को यहीं विराम देती हूं और इसी के साथ हम और आप मिलकर सुन लेते हैं यह गीत।

0: बहनों, अब करते हैं रुख आज के कार्यक्रम की दूसरी चर्चा की ओर। बहनों, हम आज द्विवेदी युग के उस महान व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। वह एक प्रतिभाशाली लेखक, आलोचक, निबंधकार, संपादक और समाज सुधारक थे। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को इतना बड़ा माना गया है कि एक पूरे युग का नाम ही उनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। हिंदी जगत उन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म आज के दिन यानी 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। आपने हिंदी भाषा को सरल, शुद्ध और सुंदर बनाने का काम किया। उस समय हिंदी भाषा एक जैसी नहीं थी, लेकिन आपने अपने लेखन और संपादन से हिंदी को सही और व्यवस्थित रूप दिया। आपने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। आपके समय में यह पत्रिका हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में गिनी जाने लगी। आपने कई नए लेखकों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और प्रेमचंद्र जैसे बड़े साहित्यकारों को पहचान दिलाने में आपका बड़ा योगदान रहा। आचार्य द्विवेदी केवल साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। आपने अपने लेखों में अंधविश्वास, अशिक्षा और समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। आपका मानना था कि साहित्य समाज को जागरूक बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है। आपकी भाषा बहुत सरल और साफ होती थी। आप साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की सेवा का माध्यम मानते थे। आपके लेखों में देश प्रेम, नैतिकता और समाज सुधार की भावना साफ दिखाई देती थी। आप भी हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने भाषा और साहित्य को नई पहचान दी। अंत में हम यही कह सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनकी रोशनी आज भी हिंदी जगत को मार्ग दिखा रही है। बहनों, इस चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूं और अब हम बात करते हैं नन्हे नन्हे फूलों की। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, वह बाहर की दुनिया को देखने के लिए घर के बाहर कदम रखते हैं और तब शुरू होता है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन। बहनों, जब बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सब बातों की जानकारी लेते हैं वार्ताक्रम के अंतर्गत बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें। वार्ता को सुनकर इस विषय पर हमें पूरी जानकारी दे रही हैं श्वेता कुलश्रेष्ठ। तो सुनते हैं हम और आप मिलकर यह वार्ता।
1: पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है और इसके क्या नियम है या बच्चों को कैसे सुधारा जा सकता है, आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग की गाइडलाइन बताऊंगी और फिर ये भी बताऊंगी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग वह दिशा सूचक यंत्र है या कंपास का रोल करता है जो पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर परिवार अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है।

है। तो कभी भी पेरेंटिंग के मामले में ये सोचना कि यही सही है या यही सही नहीं है, ये बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो चीज एक के ऊपर इफेक्ट करती है शायद दूसरे के ऊपर बिल्कुल काम ना आए, जो चीज एक परिस्थिति में काम आई है शायद दूसरी स्थिति में बिल्कुल काम ना आए। तो इसलिए जब हम पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कंपास की दिशा देखकर ये सोच सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियर करना है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये हर पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी है तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है आज हम समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने बच्चों के साथ कोई भी चीज करना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन करवाना चाह रहे हैं, उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं या इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप अगर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखेंगे तो ये कंपास की तरह आपको दिशा दिखाएगी कि आपकी पेरेंटिंग की जर्नी सही दिशा में है या नहीं है। तो पेरेंटिंग का पहला रूल है कि पहले प्यार फिर सुधार। इसका मतलब है कि जब हम माँ बाप होते हैं तो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बच्चों को सुधारा जाए और बार बार हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर हमने दिन में 10 बार बच्चों से बात की तो 10 बार हम बस उनको सुधारने के लिए ही कहते हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसे बैठना है, तुम्हें ऐसे करना है। तो इस सब बातों में हम बच्चों को प्यार देना भूल जाते हैं। तो पहला नियम है कि अगर बच्चों के साथ दिन में 10 बार बात करें तो 8 बार प्यार के ऊपर फोकस करें और 2 ही बार सुधार के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर आप सुधार के ऊपर जरूरत से ज्यादा फोकस करेंगे तो बच्चे का और आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा नियम है, बच्चे को समझाओ पर डराओ मत। बच्चा गुस्से में है, बच्चा जिद कर रहा है या बच्चा कोई भी टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो उस टाइम हम खुद भी ट्रिगर हो जाते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं या फिर बच्चे को समझाने लगते हैं या भाषण देने लगते हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि बच्चों को डराकर कोई भी चीज़ नहीं करनी है, बट उस चीज़ को करने के पीछे क्या कारण है ये बच्चे को समझाना है और कब समझाना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर डेनियल सीकर जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि जब बच्चा जिद कर रहा है, गुस्से में है, तो उसका लोअर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है जिसमें इम्पल्स बिहेवियर होता है, गुस्सा, तनाव, ये सारी चीज़ें होती हैं, और अपर ब्रेन जो लॉजिकल थिंकिंग के लिए, रेशनल थिंकिंग या इम्पल्स को कंट्रोल करता है, वो शट डाउन हो जाता है। तो बच्चे में ये सोचने की क्षमता ही नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस टाइम पे हमें कौन से तकनीक अपनानी चाहिए जिससे को हम बच्चे को बिना देरी के समझा सकें। डिसिप्लिन का तीसरा गाइडलाइन है, बच्चे जैसे हैं वैसा स्वीकार करें। आजकल माँ बाप के ऊपर एक प्रेशर है कि हर बच्चा हर चीज़ में एक्सीलेंट बन जाए, चैम्पियन बने, या तो पढ़ाई में या तो स्पोर्ट्स में चैम्पियन बन जाए। माँ बाप बच्चों को 24 घंटे टोकते रहते हैं तो बच्चों को लगता है मैं जैसा हूँ वैसा मेरे माँ बाप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और बच्चे को ये फील होने लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, और अगर मुझे माँ बाप का प्यार चाहिए तो मुझे हमेशा अपने अंदर करेक्शन करना है। इसकी वजह से माँ बाप और बच्चों के बीच में तनाव आने लगता है। कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कई बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे एवरेज भी होते हैं। तो क्या एवरेज बच्चों को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगली गाइडलाइन ये है कि पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा अनुशासन पर हम लोग ध्यान देते हैं, जो गलत है। कुछ पेरेंट हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, वे बच्चों को गलतियां करने ही नहीं देते, क्योंकि जब गलतियां ही नहीं करने देंगे तो बच्चों को जो सुधारने की क्षमता है, गलतियों को सुधारने की क्षमता उनके अंदर डेवलप ही नहीं होती है। अगर बच्चा गलती करे तो गलती में से वो क्या सीख रहा है, उस सीख से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और बड़ा होकर जब कभी गिर जाए तो उसको संभलना आ पा रहा है या नहीं। जिन माँ बाप ने बच्चे को कभी फेल ही नहीं होने दिया, कभी गिरने ही नहीं दिया, कभी गलती ही नहीं करने दी, तो बच्चे को बड़े होने तक वो बच्चे यही मानते हैं कि गलतियां हो ही नहीं सकती हैं, और छोटी सी गलती के लिए भी वो खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, और छोटी सी गलती की वजह से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं या आत्महत्या जैसे विचार करने लगते हैं। तो नियम कहता है कि बच्चों को गलतियां करने दो, और माँ बाप को यहाँ पर अपने ऊपर काम करना है जिससे कि वो बच्चों को गलती करता हुआ देख पाएं, उनको संभाल पाएं और गलती में से कुछ सीख दे पाएं। पांचवा पॉइंट कहता है कि बच्चों को खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दें। बहुत सारे माँ बाप जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं, बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम के आते उन्हें खुद सॉल्व करने लग जाते हैं, चाहे वो स्कूल का प्रोजेक्ट हो, होमवर्क हो, दोस्तों से लड़ाई हो, या और भी कोई छोटी सी बातें हो, उसमें माँ बाप कूद पड़ते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप ही नहीं होती हैं, और जब ये नहीं होगा तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों के सोचने की क्षमता कि इस प्रॉब्लम से निकलने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
तो बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए, आप बस उनको गाइड

0: करिए, अगर बच्चा हेल्प मांग रहा है तो क्वेश्चन पूछिए, उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कीजिए, बट उनका प्रॉब्लम प्लीज खुद सॉल्व मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है, वो बच्चे को उम्र के हिसाब से सीखने की आजादी दीजिए। हमने देखा है 5 या 6 साल के बच्चे के माँ बाप उसको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को नहीं पता कितना खाना है। उससे बड़े बच्चों को खुद कपड़े पहनाते हैं, बच्चों की फ्रेंडशिप किसके साथ होनी है, सोशल लाइफ किस कैसी होनी है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चों को आज़ादी ही नहीं देते हैं। खुद की सोच डेवलप करने पर ज़्यादातर हम बच्चों को ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं बच्चे वैसा ही करें। ऐसा होने पर अगर बच्चों को आज़ादी नहीं दी जाती है, क्योंकि वो खुद माँ बाप सोचते हैं कि आज़ादी देने से बच्चा गिर सकता है या प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि बच्चे को तो अकल ही नहीं होती है, तो ये बात आपकी गलत है। आप बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से आज़ादी दीजिए। अगर बच्चा 3 साल का है तो अपने हाथ से खाना खा सकता है, 5 साल का अगर बच्चा है तो कपड़े खुद पहन सकता है, अगर बच्चा स्कूल में है तो अपना होमवर्क भी खुद कर सकता है, और अगर नहीं भी करता है तो उसका जो भी परिणाम है वो बच्चे को खुद भुगतने दीजिए। तो ऐसा करने से बच्चे की हिम्मत बढ़ेगी और वो सेल्फ एक्सप्रेस करना सीख पाएगा, अपने मन की बात बता पाएगा, और जब उसमें किसी बात का डर नहीं रहता है तो वो हर चीज बहुत आराम से कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो याद रखने वाली चीज है कि अगर बच्चा जो भी सीख रहा है या आप उसको जो सिखाना चाह रहे हैं तो वो आपको पहले खुद करना है। अगर आप बच्चे को फोन देने के लिए मना कर रहे हैं तो क्या आप खुद को फोन से दूर रख पा रहे हैं? तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। न्यूरोसाइंस इसके बारे में भी बताती है कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से अपने सर्वाइवल के लिए माँ बाप की तरफ देखता है, और माँ बाप उसकी हर छोटी बात की को देखकर माँ बाप का वो कॉपी करता है। नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि अगर बच्चा माँ बाप घर में ऊंचा बोलते हैं या मार पिटाई करते हैं और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा शांति से रहे, बच्चा बाहर जाके अच्छा बिहेव करे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आज आपका बिहेवियर जो बच्चों के साथ चाहते हैं पहले खुद के लिए होना चाहिए। आपके बच्चे की दूसरों की बात सुने या संवेदनशीलता से पेश आए तो आपको वही सारा कुछ अपने ऊपर भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले तो आपको भी घर में सच बोलना है। अगर आप, क्योंकि बच्चे सारी चीजें देखकर सीखते हैं ना कि भाषण सुनकर, तो आप जो बोलेंगे वो बच्चा कभी नहीं सुनेगा, इसलिए आप अपना बिहेवियर चेंज करिए, बच्चे का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक कायदा यह भी है कि जो बच्चों में आपने देखना है वो खुद के साथ कर लीजिए। बच्चों के साथ साथ ईमानदारी से बात कीजिए। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो गलती के बारे में बच्चों को बताइए, सॉरी भी बोलिए। ये वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आप बच्चे से कराना चाहते हैं उसके बारे में आपको बच्चे से खुल के बात करनी चाहिए। जो भी तकलीफ है, किसी भी किस्म का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी इंसान होते हैं और गलती कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ ऑनेस्टली आप बात करेंगे तो बच्चे का और आपका रिलेशन स्ट्रांग रहेगा। अगर आप मानते हैं कि बच्चों को झूठ बोलकर आप कुछ भी कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ रहता है तो छोटी छोटी बात के बारे में बच्चे को पता होता है। आप उनको क्या बताना चाह रहे हो, क्या बताना नहीं चाह रहे हो, ये कोई बात छुपाने की नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट, जिसमें परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है, परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकता। आप कितने भी वीडियोस देख लें, ऑडियो सुन लें, बुक्स पढ़ लें, इन सब के बावजूद एक दिन ऐसा आएगा जब आप बच्चे पर हाथ उठा देंगे, उनको गुस्सा कर लेंगे, या कोई भी बात पर आप उनको नाराज कर देते हैं। तो ऐसी बात में कायदा, या आपने कोई कायदा फॉलो नहीं किया, तो ये समझने की बात है कि हम कोई मशीन नहीं बना रहे हैं, ना ही कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, और जहां इंसान आता है वहां परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ना ही पेरेंटिंग में ये एस्पेक्ट करना चाहिए। आपको रिजल्ट भी परफेक्ट ना मिले तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ नहीं होता है। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारी पॉजिटिव पेरेंटिंग की गाइडलाइन है, जैसा कि मैंने कहा, जो सिर्फ दिशा दिखा सकती है। बच्चे के साथ बातचीत करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियर गड़बड़ हो रहा है, तो इन कायदों को आप ध्यान में रखकर बच्चों के व्यवहार को चेंज कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। तो आप जैसा रिएक्ट करेंगे उसी किस्म का आपको डायरेक्शन मिलेगा। और इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने बच्चों का भला चाहते हैं। अगर इन गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे तो बच्चों के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और इस तरह की पेरेंटिंग को देखते हुए जब आपके बच्चे बड़े होकर माँ बाप बनेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे।
1: अभी हमने और हमारी प्यारी बहनों ने सुनी वार्ताक्रम के अंतर्गत वार्ता, बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें, जानकारी दी श्वेता कुलश्रेष्ठ ने। इसी के साथ रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों, अब समय है घरेलू नुस्खों को बताने का, तो अब बताते हैं हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे। बहनों, कभी कभी सब्जी की ग्रेवी बहुत पतली हो जाती है, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा भुने चने का पाउडर या थोड़ा बेसन मिला लें, तो इससे क्या है, जो हमारी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी, साथ ही स्वादिष्ट भी हो जाएगी। इसी तरह बहनों, जब हम पराठे बनाते हैं तो कुछ समय बाद जो हमारे पराठे हैं वो काफ़ी कड़क हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पराठे हैं वो नरम बने रहें, मुलायम बने रहें, तो उसके लिए केवल करना ये है कि जब भी आप पराठे बनाएं तो उसमें एक उबला जो आलू होता है आटे के साथ ही मैश करके मिला लें। जब आप जब पराठे बनाएंगे और उसको कुछ देर के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मुलायम होंगे। तो बहनों, ये तो थी कुछ घरेलू टिप्स जो हमने आपको बताई। इसी के साथ अब करते हैं रुख पुनः मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों, इस गीत की समाप्ति के साथ ही अब वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम को भी समाप्त करने का। हमारी प्यारी बहनें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी, अपने परिवार के साथ खुश रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे यानी प्रियंका खंडेलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ रही प्रियंका खंडेलवाल। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

खिलाड़ी 786 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे हिमेश रेशमिया के। आइए सुनते हैं फिल्म आर्या पार का गीत, जिसे अपने स्वर दिए हैं अभिजीत और साधना सरगम ने।

0: PMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा

0: समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों

0: को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है।

0: और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन विशेष है, इसलिए कार्यक्रम भी कुछ खास है। जी हां, आज है परिवार दिवस और आज का ये कार्यक्रम सरहद के वीरों के नाम है। कहते हैं, एक सैनिक जब सीमा पर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मां की दुआ होती है। मां की वो आंखें जो बेटे को दूर जाते हुए भी आशीर्वाद देती हैं, मां का वो दिल जो हर खबर पर धड़क उठता है। आज का पहला गीत उन सभी वीर माताओं को समर्पित है जिन्होंने अपने बेटे देश को सौंप दिए।

जी हाँ साथियों, जब एक सैनिक तिरंगे को सलाम करता है तो उसमें सिर्फ कर्तव्य नहीं पूरा देश बसता है। सर्द हवाएं हों या कठिन हालात, एक जवान की धड़कनों में सिर्फ भारत माता की रक्षा का संकल्प होता है। देशभक्ति की इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, सीमा पर खड़ा जवान बाहर से चाहे कितना मजबूत दिखे, लेकिन जब रात को परिवार की तस्वीरें देखता है तो उसकी आंखों में भी भावनाएं उतर आती हैं। पत्नी की मुस्कान, बच्चों की बातें और घर की यादें उसे हर दिन नई ताकत देती हैं। इन्हीं भावनाओं को समर्पित है कार्यक्रम का अगला गीत।

जी हाँ साथियों, फौज में साथ चलने वाले साथी सिर्फ दोस्त नहीं होते, वहाँ वो ही परिवार बन जाते हैं। हर मुश्किल में साथ खड़े रहना, एक दूसरे के लिए जान तक दांव पर लगा देना, यही दोस्ती भारतीय सेना की असली ताकत है। तो एक ऐसा ही प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं।

जी हाँ साथियों, घर से रहने जो घर से दूर रहने वाले जो सैनिक हैं, ये अपनी छोटी छोटी यादों में अपना संसार खोजते हैं। कभी माँ के हाथ के खाने की बड़ी याद आती है और कभी याद आता है घर का आंगन, और याद आती है अपने भाई बहनों की भी आवाज़ें भी, किस प्रकार से वो घर के आंगन में खेलते थे, किस प्रकार से साथ में बैठकर खाना खाते थे और किस प्रकार से कभी कभी शरारतें भी करते थे। तो बस घर की यादें जब आती हैं तो सुकून भी देती हैं और आंखें भी भर देती हैं।

जी हाँ साथियों, हर सैनिक की आंखों में भी सपने होते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताने के, अपने बच्चों की मुस्कान देखने के, लेकिन सबसे बड़ा सपना होता है अपने देश को सुरक्षित और खुशहाल देखना। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन सैनिकों के प्रति हमारा सम्मान कभी समाप्त नहीं हो सकता। हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं क्योंकि कोई सीमा पर जागता है। देश के हर वीर जवान और उनके परिवारों को समर्पित ये अंतिम गीत।

इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, परिवार रूपी बगिया भी उसी तरह है जिस तरह यह जीवन का अनमोल उपहार है, जहाँ प्रेम, विश्वास और अपनापन हमेशा मिलता है, वह होता है परिवार। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 15 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इस दिन का उद्देश्य परिवार के महत्व को समझना और समाज में परिवार की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना है। परिवार हमें प्रेम, सुरक्षा, संस्कार और सहयोग प्रदान करता है। इस दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 1993 में की थी और पहली बार इसे 1994 में मनाया गया। जीवन में परिवार का बहुत ही महत्व है। परिवार बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें नैतिक मूल्य और संस्कार भी सिखाता है। परिवार कठिन समय में हमारा सहारा बनता है। एक खुशहाल परिवार से ही मजबूत समाज का निर्माण होता है। यह दिवस परिवार के महत्व को दर्शाता है, साथ ही साथ इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। यदि बात करें कि इस दिन को हम कैसे मनाएं, तो इस दिन को मनाने के लिए हम परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं, यानी परिवार के साथ हम समय बिता सकते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके भी हम सामाजिक जागरूकता वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर इस दिन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं परिचर्चा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार। इस परिचर्चा में भाग ले रही हैं प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर अनीता गुप्ता और भेंट की है ओपी सिंह ने।
1: यो तो भारतीय संस्कृति में सारी दुनिया को ही एक परिवार की परिभाषा में या जद में रखा गया है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारी प्राचीन उक्ति कहें, सूक्ति कहें, लेकिन जितना भी भारतीय समाज और सभ्यता में समाज में परिवार को लेकर जो रचना रही है वो ऐसी है जहां न सिर्फ संस्कारों की पाठशाला के रूप में उसको देखा गया है, बल्कि जीवन के जितने गुण हो सकते हैं उन सबके दायित्व और उत्तरदायित्व बोध के लिए परिवार हमारी पाठशाला के रूप में रहा है। वर्तमान संदर्भों में बहुत कुछ बदला है, अर्थ हमारे जीवन की केंद्र में हो गया है और इस अर्थ के अर्जन के लिए जो जीवन की थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं परिवार की ये परिभाषा, परिवार की ये आधारशिला खिसक रही है। आज संयुक्त परिवारों से एक न्यूक्लियस परिवार की जद में हम लोग आ गए हैं। तो जो गुणों का विकास होता था, उत्तरदायित्वों का जो बोध होता था, जहां हम जी करके सीखते थे, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो सामूहिक जो व्यवस्था परिवार की रही भारतीय समाज में, वो क्यों करके हमसे छूट रही है, उसके बिखरने के क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या परिणाम और प्रभाव हम अपने जीवन में झेल रहे हैं, और आगामी अगर हम समय की बात करें तो कहाँ जाएंगे हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में अगर हम परिवार की परिकल्पना करें तो आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ हैं प्रतिभा शर्मा जी, जो सदस्य जिला विधिक प्राधिकरण मथुरा की। मैं आपका स्वागत करता हूं।
0: धन्यवाद।
1: साथ ही हमारी डॉक्टर अनीता गुप्ता जी, जो प्राचार्य हैं हुकुम सिंह एजुकेशनल कॉलेज कारब की, मैं आपका भी स्वागत करता
0: नमस्ते।
1: हूं। जैसा श्रोताओं से चर्चा हो रही थी भूमिका के तौर पे, मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा
0: जी
1: कि जो परिवारों का जो परिदृश्य आज
0: जी
1: आप देखती हैं, क्योंकि
0: जी
1: आप तो उस विधिक सेवा के प्राधिकरण की सदस्य भी हैं और आपके पास बहुत सारी चीजें चल करके आती हैं,
0: जी
1: तो अगर हम कारणों में जाना चाहें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता जिसके कॉस्ट पे या जिसके आधार पे हम परिवार को छोड़ने या विघटन के लिए आ जाएं।
0: जी
1: तो स्थितियां परिस्थितियां जो बदली हैं, क्या कुछ समाज में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, परिवार के टूटने की या बिखरने की बात हम करें तो प्राचीन व्यवस्थाओं से हम लोग अलग हट चुके हैं।
1: जी
0: प्राचीन व्यवस्था जो थी, जैसा आपने कहा, वसुधैव कुटुंबकम,
1: जी
0: जहां पूरे वसुधैव को कुटुंब मानकर रहा जाता था और पहले गांव, कुटुंब, मोहल्ले इन्हीं सब पर बना करते थे,
1: जी
0: जिसके आधार पर परिवार व्यवस्थाएं बनी और संयुक्त रूप से परिवार रहा करते थे, जहां दादा, नानी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ सब लोग संयुक्त रूप से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, व्यवस्थाएं बदलती गईं, प्रकृति में और सोच में परिवर्तन आया, तो परिवारों का भी स्वरूप बदलने लगा और एकल परिवारों का चलन होता गया। पहले क्या होता था, जब जैसे एक बहु

0: है या बेटी है परिवार में है, वो कुछ भी गलत कर रही है या उससे भूलवश गलती हो रही है, तो चाची, ताई, दादी सभी उसको रास्ता दिखाने का प्रयास करते थे। और जब नवबधू घर में आती थी, तो जब घर में घुसते थे तो दो संस्कार होते हैं हमारे यहाँ पे विवाह के दौरान। एक, ससुराल में जब दूल्हा जाता है तो उसका दरवाजा रोका जाता है।
1: जी
0: इसको हम हंसी मजाक में लेते हैं और केवल नेक तक लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार की बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि वहां सालियां जीजा को ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि आपसे कभी कोई गलती हो या मेरी बहन से कभी कोई गलती होगी और आप घर से बाहर निकलेंगे तो हम लोग दरवाजे पर आपको रोकने के लिए खड़े हैं, इसलिए दरवाजे रोकने की व्यवस्था की गई।
1: जी
0: और उसी तरीके से जब वधू घर में प्रवेश करती थी तो नंदों के द्वारा भी दरवाजे को रोका जाता था और भाई भाभी को घुसने के लिए हास परिहास में कि नेक दो तब हम आपको जाने देंगे। तो उसका भी जो हमारे वेदों में महत्व था वो यही था कि अगर हल्का फुल्का झगड़ा हो जाए तो वधू और लड़का घर से बाहर ना निकलें, तुम्हारी बहनें तुम्हें रोकने के लिए दरवाजे पर खड़ी मिलेंगी।
1: जी
0: लेकिन धीरे धीरे उन सब परंपराओं में परिवर्तन हो गया और उनको हमने हंसी मजाक में ले लिया, और यही वजह है कि आज परिवार पूरी तरीके से बिघटन की ओर है।
1: जी यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि समाज का एक ढांचा ही नहीं था वहां, एक समाज की संचालन के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं थी, कुछ मान्यताएं थी, बल्कि उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं के माध्यम से एक नियंत्रण भी था कि समाज के जो लोग हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो एक निरंकुशता के तहत नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तहत अपना जीवन यापन करें और सबके सहयोग और सबके साहचर्य और सबके
0: जी,
1: उत्तरदायित्व के लिए वो
0: परंपराओं के
1: जी
0: थ्रू।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: मैडम, आप चूंकि समाजशास्त्र से जुड़ी हुई हैं और प्राचार्य
0: जी
1: भी हैं,
0: जी
1: कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, क्या जो मैडम कह रही हैं कि सिर्फ इतना ही है कि सामाजिक व्यवस्थाएं तो थी, आज भी है, लेकिन जो उन सामाजिक व्यवस्थाओं में ढील आ गई, वो अंकुश थोड़ा सा कम हो गया, जैसा आपने कहा कि संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार की तरफ आ गए, तो कई बार तो ये मजबूरी है कि भाई हम जीविका के लिए बाहर
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: कई बार हमारे परिवार की जरूरत भी है कि हम साथ
0: आवश्यकताओं
1: नहीं।
0: के अनुरूप।
1: हाँ,
0: जी
1: लेकिन सिर्फ आवश्यकताएं और ये मान्यताएं ही नहीं, और भी बहुत सारे कारण ऐसे
0: जी
1: रहे जिन्होंने यहां तक
0: आर्थिक
1: आने में।
0: प्रॉब्लम।
1: जी जी
0: हाँ
1: जी
0: जी जी है ना
1: तो आपका जो जो मानना है वो क्या है इसमें?
0: सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हमारी परंपराएं ही हमें परिवार से अलग कर रही
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि परिवार में जब बहू आती है तो वो बेटी की तरह ही मान्य होनी चाहिए, है ना, और जब दामाद आता है तो उसे बेटे का एक दर्जा दिया जाता
1: जी
0: है। लेकिन आपने ये देखा है सोच में कि परिवर्तन के दौर में, आज के समय में, आधुनिकता के दौर में, यदि माँ बेटी को भेज रही है तो उसको कुछ अपनी संस्कार देना चाहिए,
1: जी
0: है ना, कि बेटी परिवार एक नहीं, अब आपके दो परिवार एक ही हो जाएंगे,
1: जी जी
0: है ना। यदि हमें इन परिवार में कभी हमारी छोटी बहुत सोच में गलतियां होती हैं या भूल
1: जी
0: हो जाती है तो उसे हमें हटा देना है, उसे हमें अपना एक ईगो नहीं बनाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि बेटी ने अपना ईगो बना लिया, आज मेरे से ये कह दिया गया, सासू माता जी ने आज मुझसे ये कह दिया, या ननंद जी ने ये कह दिया,
1: जी
0: या हस्बैंड ने परिवार में पति जी ने ये कह दिया, तो उसको ना सोच के बैठ जाती है कि क्या मेरे से ऐसा क्यों कहा गया, क्यों कहा गया।
1: जी
0: यदि हम उसको ये सोचें कि क्या मेरी माँ मुझसे नहीं कहती है, क्या मेरा भाई मुझसे नहीं कहता है, क्या मेरा पिता नहीं मुझसे कहता है, तो ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियों को हम इग्नोर करते चले जाएं या थोड़ा सा हटा दें उसको, और फिर कभी हम फुर्सत के समय या हंसी मजाक के समय उस चीज को समझौते के तरीके से हम बता दें कि ये क्या चीज है हमारी, तो हम उस परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं।
1: जी यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर जो परिवार से जिन संबंधों को हम छोड़ के गए थे, चाहे
0: जी
1: भाई को, चाहे
0: जी
1: माता को, चाहे पिता को, चाहे अपनी बहन को, अगर उस जाने वाले परिवार में भी अगर उन्हीं संबंधों को
0: वो
1: हम जीने की
0: हम
1: कोशिश
0: बना
1: करें
0: कोशिश करते
1: तो
0: हैं,
1: शायद बहुत सारी चीजें समाधान के रूप में
0: समाधान के रूप में हम उसे
1: हमारे
0: रोक सकते हैं।
1: साथ हो सकती हैं
0: जी
1: उसमें। मैडम, ये जो अनिता जी ने कहा कि हम कई बार छोटी छोटी चीजों को अपने उसकी अड़चन बना लेते हैं,
0: इशू बना
1: अब
0: लेते हैं
1: इस
0: उसमें।
1: इशू
0: जी
1: बना लेते हैं उसमें, तो यहां मैं फिर से उस सामाजिक व्यवस्था पर, परिवार वाली उस पर लौट के आऊंगा कि परिवार जो था वो एक जीने की कला थी, वहां हम न सिर्फ

0: संस्कारों को जीते थे, नैतिक मूल्यों को जीते थे, बल्कि हम बहुत सारे जो हमारे जीवन के मूल्य होते हैं, चाहे हम दया की बात करें, हम चाहे करुणा की बात करें, चाहे भाव और संवेदनाओं की बात करें, चाहे हम सहयोग और सेवा की बात करें,
1: जी
0: क्योंकि कई पीढ़ियां, जैसे आपने कहा था कि कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी,
1: जी
0: वहां वो सिखाती भी थी और होने वाली गलती पे वो थोड़ा सा अंदर से सहारा देके डांट भी लगाती
1: संयुक्त
0: थी। तो
1: परिवारों की व्यवस्थाएं
0: चीजें
1: थी।
0: हम सीखने जी करके सीख रहे थे, वो जी करके जो सीखना था वो कहीं अब इस एकल परिवार में हमसे छूटता जा रहा है, मैं
1: बिल्कुल,
0: यानी वो जो कमी है
1: हाँ
0: वो उसकी वजह से कई बार ये समस्याएं
1: आपने
0: हैं क्या?
1: बहुत अच्छा सवाल उठाया और
0: जी
1: ये कटु सत्य है, क्योंकि आप अगर संवैधानिक तौर पे भी देखें तो HUF फैमिली कहा जाते थे, हिंदू संयुक्त परिवार,
0: जी
1: और उसका एक मुखिया हुआ करता था जो कि दादा या परदादा होते थे। आज की परंपरा क्या है कि मुखिया वो व्यक्ति हो गया जो कमा रहा है।
0: जी
1: उस वक्त मुखिया घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था
0: जी
1: वो मुखिया होता था, चाहे वो कमा रहा है या
0: या
1: नहीं
0: नहीं
1: कर
0: कमा
1: रहा,
0: रहा है जी
1: लेकिन मुखिया बड़ा ही व्यक्ति होता था, और जितने लोग भी कमाते थे वो सब उस मुखिया के पास ला करके रखते थे और वो मुखिया ही उसको खर्च करता था।
0: जी
1: उसी के अनुसार हमारी व्यवस्थाएं जब आगे चली तो जब बंटवारे होते थे तो संयुक्त हिंदू परिवार HUF कह के किया गया और सबके बराबर बराबर हिस्से किए जाते थे, यानी कि बच्चा जब गर्भ में आया और तभी उसका हिस्सा नियत हो जाता था,
0: जी
1: जैसे हम कहते थे ना कि जन्म के साथ ही हमको अधिकार मिल गया, तो ये चीज भी तभी से थी। लेकिन जैसे जैसे संयुक्तता खत्म हुई, या ये कहिए कि कुछ बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, तो वो जब बाहर सर्विस करने जाने लगे तो फिर पहले वो अकेले गए, फिर जब उनकी शादी हुई तो कुछ समय बाद परिवार ने कहा कि बच्चा भूखा रहता है, खाना पीना बाहर से खाता है, तो पत्नी को भेजा, पत्नी के साथ फिर बच्चे भी वहीं रहने लगे, फिर उनकी शिक्षा भी वहीं रहने लगी। लेकिन उस वक्त भी ये होता था कि त्योहार जब हो रहे हैं तो बच्चे घर में वापस आते थे
0: जी
1: तो वो संस्कार भी सीखते थे। आज अभी जब आपसे डिस्कशन हो रहा था तो आपने एक बात कही थी कि आज बच्चों को ये बताना पड़ता है कि पैर छू लो,
0: जी
1: लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जब दादाजी सो के उठे तो दादाजी के जो पुत्र हैं वो कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं वो सब पैर छू रहे हैं, और जब वो बाहर निकल के गए तो पड़ोसी भी है या कोई भी चल रहा है तो वो ये नहीं कहता था अंकल जी या चाचा जी, वो कहता था दादा पाए लागू, ताऊ पाए लागू। पाए लागू का भी मतलब होता है चरण स्पर्श करना। तो वो
0: जी
1: संस्कृति संस्कारों में भरी हुई थी, जिस वजह से हमारे पैर छूने के कई जो कारण थे जो आज योगा के रूप में भी प्रयोग हो रहे हैं वो सब चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग शहरों की संस्कृति में गए, वहां रहने लगे और हलो हाय की जिंदगी फिल्मों से आने लगी, तो परिवार व्यवस्था में भी दरक आई। पहले यह भी कहा जाता था कि पहला बच्चा जो होता है वो नानी क्या होता है, और जिससे नानी और दादी की परंपराएं भी चलती थी और बच्चे में अटैचमेंट आता था। आज वो दादी नानी के परिवारों ने एक अस्पताल का रूप ले लिया। आज इसी वजह से आप देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि काम करना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर्स ने उसको प्रोफेशन बना रखा है। तो ये सब चीजें भी जो परिवार के विघटन की और परिवार की व्यवस्था को तोड़ रही हैं।
0: जी
1: और शायद इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी और बाकी लोगों ने ये महसूस किया कि परिवारों को जोड़ा जाए, तो परिवार दिवस के रूप में 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने परिवार दिवस बनाने की घोषणा की, और इसी के तहत परिवार दिवस को 1995 में संयुक्त रूप से संपूर्ण भारत संपूर्ण देश में मनाने के लिए लागू भी किया गया।
0: जी
1: तो
0: जी
1: और जिसके तहत हम सबको ये बताने का प्रयास करते हैं कि परिवार टूटने नहीं चाहिए। हम कहीं भी जॉब करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक तो हमें त्योहारों पे संयुक्त रूप से रहना चाहिए, उसके साथ अपने परिवार के टच में बना रहना चाहिए।
0: जी जी
1: आज आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ यौन हिंसा बहुत ज्यादा हो गई, वो क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं, वो चाहे जैसे साहित्य को पढ़ते हैं और देखते हैं। इसके साथ ही माता पिता दोनों जॉब पर हैं, अगर कोई मानसिक विकृति का व्यक्ति है तो वो जानता है कि बच्चा इतने समय तक अलग रहने वाला है, वो उस समय का फायदा उठाता है, और बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें एक टॉफी दो, एक बिस्किट की पैकेट दो या प्यार से बोलो तो वो उसे अंकल मामा कहने लगते हैं और नए अपराध को जन्म देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो सब में वही भाव होता था कि ये उनके फलाने की नातनी है, हमारी भी नातनी है, तो अगर बच्ची कहीं अकेली जा भी रही है तो तुरंत सूचना दी जाती थी कि आपकी नातनी वहां पर है, या उसको लेके चलो तुम्हारे दादाजी के पास छोड़ते हैं, और नहीं तो दादा नानी चाची ताऊ के संरक्षण में तो बच्चे रहते ही थे। तो इस तरीके से अपराधों पर भी अंकुश था, और संयुक्त परिवार के आनंद अपने अलग थे, अलग ही एक महत्व था, और आज एकल परिवारों के दुष्परिणाम ही देखने को मिल रहे हैं, और परिवारों में जो स्थिति हो

0: या वो आप सब मैच देख ही रहे हैं।
1: जी, अब अनिता जी, जैसा प्रतिभा जी ने कहा कि हम उस एकल परिवार के जो दुष्परिणाम झेल रहे, शायद वो एकल परिवार के जो लाभ है उनसे कई गुना ज्यादा है, जो परेशानियां हम समाज में आज देख रहे हैं, चाहे वो परिवारों में, जो बच्चों में, जो उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा हो, एग्रेशन हम देखते हैं, कई बार बच्चे माँ बाप की मान भी नहीं रहे हैं, कई बार जो जिस तरह की मुद्दे अभी प्रतिभा मैडम ने उठाए कि चाहे वो बच्चों के साथ हो रहा हो, दुर्व्यवहार हो, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो परिवार के टूटने से, एकल परिवार के होने से हमारे सामने आ रही है। तो क्या आप मानती है, क्योंकि आप तो एजुकेशन उससे जुड़ी हुई है, जो शिक्षा है, जो आज शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा के संदर्भ में यही कहा जाता है शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक टूल के तौर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा भी आज एक कमाने का जरिया हो गया हम बच्चे को और परिवार में आने वाले अपने जो बच्चे हैं उनको यही सिखाते हैं कि आपको बड़ा व्यक्ति बनना है, जो एक अच्छी इनकम
0: करेगा,
1: अच्छा उसको एक पद पोस्ट और प्रतिभा मिलेगी,
0: उससे परिवार का भी एक अलग
1: अलग
0: पहचान
1: बनेगा। लेकिन क्या इस तरह की जो बच्चों में मानसिकता है, जो बच्चा आगे चल के समाज का अंग बनेगा, फिर वो शायद, मैं समझता हूँ, बड़ा व्यक्ति तो शायद बन जाता है लेकिन परिवार का अंग नहीं बन पाता। जैसा इन्होंने एक बात को उठाया कि कम से कम त्योहार तो हम सामूहिक रूप से मना लें, हमारे पास शायद त्योहार ही नहीं बल्कि परिवारों के उन संस्कारों के लिए कई बार समय नहीं मिलता
0: जो हमारे परिवार से मिलते हैं।
1: हाँ, कई बार तो ऐसा सोचते हैं कि दाह संस्कार और वहां तक भी बच्चे
0: नहीं पहुंच पाते
1: समय पर। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या इन टूटते हुए परिवारों में या परिवारों में आ रही समस्याओं के लिए कहीं कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें किया जाना बहुत जरूरी है उसमें?
0: जी सर, है ना, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो संस्कारों की बात हमारी आ रही है ना। अब पहले हम परिवार में हम की तरह जिया करते थे। जब से परिवर्तन आया है, चेंज आया है, आधुनिकता आई है ना, पाश्चात्य संस्कृति हमारे साथ शुरू हुई है, फैशन के दौर आ गए हैं, है ना, तो हर बच्चा फैशन के उसमें जीना चाहता है। संस्कारों में हमारे यहाँ जैसे साड़ी पहनना, बच्चे को सही तरीके से रहना, प्रॉपर गर्ल्स को रहना, आज के डेट में शर्ट और पैंट पहनने में लड़कियां बड़े अपनी शान समझती हैं, वो सोचती हैं शायद हम भी आगे मॉडलिंग कर सकते हैं या इस तरह से, मतलब अपने आप को चेंज कर लिया है। इसी तरह आपने लड़कों के भी कपड़ों के रहने सहने तरीके, बालों को बढ़ाना, रंगना, कलर करना, ये मतलब जो हमारी परंपराएं थी वो उन सबको हमने इग्नोर कर दिया है पाश्चात्य संस्कृति में, है ना। शायद हम भी अंग्रेज बनना चाहते हैं।
1: अंग्रेज बनना शायद इतना बुरा भी नहीं है,
0: लेकिन
1: अपनी चीजों को
0: छोड़ना नहीं, वही हमारी संस्कृति समाप्त नहीं करनी है हमें।
1: जी जी,
0: और आज आप देखिए कि फिर वही हमारी संस्कृति आ रही है, वापस आ रही है। जब बच्चों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या बुराइयां हैं,
1: क्या हम खो रहे हैं की कॉस्ट पे, हम क्या खो रहे हैं।
0: आप ये देखिए कि आज हम प्लास्टिक में खाना खाते हैं, हम कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पॉलिथीन से हमने यूज किया तो हम अपनी ही पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, जिससे हमें उपजाऊ बहुत अच्छी कृषि करते थे, है ना। तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे करके आप फिर उसी को समाप्त करके आप अपनी प्राकृतिक चीजों पे आप फिर लौट रहे हैं।
1: मतलब कहीं ना कहीं
0: हम वापस फिर वहीं पर आ रहे हैं,
1: देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं जो हमने अपनाया शायद वो हमारे लिए।
0: अब बात आती है शिक्षा की, लेकिन आज की शिक्षा में हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो तो हमारा नाम भी बड़े गर्व से लिया जाए, लेकिन हम इस सोच में पीछे थोड़े से रह जाते हैं, क्या हमारा बच्चा उतना कर सकता है या नहीं, क्या वाकई में बच्चा डॉक्टर बन सकता है या उसकी क्वालिटी है। हमें प्रेशर नहीं करना बच्चे के माइंड पे। आपने ये देखा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में, कोचिंग में हम भेज रहे हैं बच्चों को, आप ये देखिए कोटा फेमस है इस समय कोचिंग के लिए, आईटीआई के लिए, है ना, वहां पे बच्चों को भेज दिया, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशराइज किस तरह से है, दो तरफ से है, एक तो माता पिता ने कर्ज लिया है कि बच्चे को कोचिंग करा रहे हैं, बेटा तुम्हें आईटीआई में जाना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, बड़ी तुम्हें कॉलेज फाइट करनी है या मेडिकल में जाना है आपको, है ना, या बहुत बड़े आईएएस पीसीएस बनना है आपको, अधिकारी बनना है, क्या हम छोटा सा एक बिजनेस नहीं कर सकते यदि बच्चे में नहीं है दाग, तो हम बच्चे को समझे ना, हम बच्चे पर प्रेशर ही डालें।
1: जी, यानी बच्चा हमारा क्या कर सकता है वो अगर हम चुनके उसको दे दें,
0: हाँ,
1: तो शायद कहीं ना कहीं इसका मतलब पेरेंट्स से भी कुछ गलती हो रही है।
0: परिवार में पेरेंट्स भी।
1: प्रतिभा जी, यहाँ मैं थोड़ा सा, जो बड़ा अच्छा अनिता जी ने एक प्रश्न उठाया कि जो

0: अब आप बच्चे को बनाना चाह रहे हैं, शायद वो उसकी प्राकृतिक क्षमताओं के खिलाफ भी जा रहा है, ऐसा शायद आप कहना
1: जी
0: चाह रहे हैं, जो मैं
1: बिल्कुल
0: समझ
1: बिल्कुल
0: पा रहा हूं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: क्या इस तरह के जो बच्चे जो समाज में स्वयं एक अभिभावक की भूमिका में आते हैं, स्वयं एक परिवार का अंग होते हैं, उस परिवार के संचालन की जिम्मेदारी जब उन पे होती है, तो जो समाज के और परिवार के संबंधों का जो अंतर्द्वंद है, क्या कई बार फिर वो उन पे ज्यादा हावी हो जाता है और उसका वो जो प्रेशर है उसको बियर नहीं कर पाते, क्या इसलिए भी परिवारों के टूटने की एक आधारशिला हो जाती है, क्योंकि वो जो स्वाभाविक थे शायद वो नहीं बन पाए और वो बन गए जो उनके पेरेंट्स ने उनके
1: उनकी
0: ऊपर
1: चाह थी
0: आरोपित
1: जो
0: किया था।
1: जी
0: तो क्या ये परिवार की इस बुनियाद को हिला रहा है क्या?
1: जी बिल्कुल, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
0: जी
1: परिवार की बुनियाद इन्हीं कारणों से भी हिल रही है। कि जैसे मेरे परिवार के, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरी इच्छा है कि मुझे प्रिंसिपल टीचर बनना है।
0: जी
1: मैं टीचर की राह में तैयारी कर रही हूं और मुझे जबरदस्ती डॉक्टर की लाइन में भेज दिया गया। ये इनके इन प्रकरण में डॉक्टर या तो बन गई
0: जी जी
1: या नहीं बन पाई, तो उस स्थिति में प्रेशर मेरे अंदर था। लेकिन जब मेरा अपना परिवार चला तो मैंने सोचा कि चलिए मैं टीचर नहीं बन पाई, मैं अपने बच्चे को टीचर बना दूं।
0: जी
1: लेकिन मेरे बच्चे के मन में, एक आजकल टेक्निकल का जमाना है, वो गैजेट्स को यूज करता है,
0: हाँ
1: वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, और
0: जी
1: मैंने जबरदस्ती उसको उसमें डाल
0: जी
1: दिया।
0: फिर वो ये
1: फिर
0: गलती
1: वो
0: हो
1: एक गलती हुई, क्योंकि
0: जी
1: मेरे साथ जो गलती हुई, मुझे उस वक्त ये समझना चाहिए था कि जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात को नहीं समझा और मैं जो चाहते थे वो नहीं मुझे मिली, मैं अपने बच्चे को क्यों प्रोसराइज कर रहा हूं। हमें उसके सामने ऑप्शन रखने चाहिए कि देखिए हमारा भी हुई है, तुम्हारी इच्छा क्या है। हम जब उस बच्चे की इच्छा जान लेते हैं और तब वो अपने करियर का चुनाव करते हैं, तो उसके मन में माता पिता के प्रति भी सम्मान रहता है और अपने दादा दादा के प्रति भी सम्मान रहता है कि मेरे दादा के कारण मेरे पिताजी जो नहीं बन सके, जो बनना
0: जी
1: चाहते थे,
0: जी
1: लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी भावनाओं को समझा है, तो अवसाद की स्थिति नहीं आती है और मान सम्मान बढ़ता है।
0: चाहे कारण कुछ भी हो, मैं
1: जी
0: अब थोड़ा सा अपने इस कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पे आना चाहता
1: जी
0: हूं
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल
0: कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं।
1: हाँ
0: हम चाहे परिवार की दबाव में कहीं गलत पहुंच गए हों,
1: हाँ
0: या समाज की दिशा हमको नहीं मिल पाई हो, या समय पर सही सलाह नहीं मिल पाई हो, लेकिन जब हम एक परिवार के अंग हो जाते हैं, जहां हम दो और दो मिलकर के चार हो जाते हैं, दो
1: जी
0: हमारे बच्चे हैं, लेकिन कई बार उस स्थिति में भी फिर हम परिवार के विघटन के कारण उस पर आ जाते हैं, तो वो एक एज ए ह्यूमन बींग, एक
1: जी
0: मानवीय दृष्टिकोण के नाते, क्योंकि जो जो छोटे बच्चे हैं,
1: जी जी
0: आज हो सकता है हम दो अपनी ईगो की वजह से सेपरेशन चाहते हो, लेकिन जिन दो बच्चों का प्राकृतिक उत्तरदायित्व तो हमको दिया है ऊपर वाले ने, शायद उनके साथ अन्याय हो जाता है। तो क्या फिर मतलब समाधान कहाँ से निकलेगा, कौन इसकी पहल करे, किन चीजों को हम छोड़ें, ताकि कम से कम किसी भी कॉस्ट पे हम परिवार को तो बचा ले जाए, उसको
1: जी
0: विघटन उसका कारण नहीं हो, क्योंकि वो कोई अच्छे परिणाम समाज को और
1: नहीं मिल रहे
0: परिवार को नहीं दे
1: हैं।
0: सकता। तो
1: जी
0: फिर एक पहल तो बनती है, तो आप
1: बि,
0: तो रोजाना इससे दो
1: हाँ
0: चार
1: बिल,
0: होती हैं,
1: बिल्कुल
0: किस
1: बिल्कुल
0: तरह की सलाह
1: हाँ,
0: लोगों के लिए बनती है
1: आपने
0: इसमें?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है। आज परिवार टूट रहे हैं और क्यों टूट रहे हैं ये सब जानते हैं।
0: जी
1: एक तो सबसे बड़ा पेरेंट्स का भी जॉब में होना, तो वो तनाव वाली स्थिति आ जाती है।
0: जी
1: जब पति पत्नी जॉब में हैं तो पत्नी भी थकी आ रही है और पति भी थका हुआ आ रहा है, तो हमको सामंजस्य बिठाना चाहिए कि, और ये सोचना चाहिए कि जब मैं थक सकता हूं, मैं खाना बना के नहीं जा रहा हूं, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूं,
0: जी
1: मैं जॉब करके आ रहा हूं, तो मुझे थकान हो रही है, जबकि मेरी पत्नी खाना बना के भी जा रही है, आके भी बनाएगी और वो ऑफिस में भी काम करके आ रही है, तो उसके अंदर भी थकान हो रही होगी, उसके अंदर भी तनाव होगा। तो थोड़ी देर हम शांति से बैठें, या कभी पूछ ले पति कि क्या आपको चाय चाहिए।
0: बंधुओं, नुस्खे बहुत हो सकते हैं, आयाम बहुत हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, उसके समाधान भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में जो परिवार हमारी जीवन की आधारशिला रहा, जीने की कला रहा, जीने की पाठशाला रहा, हमने यहाँ जीना सीखा है, तो वो जीना ही अगर हम पुनः शुरू कर दें तो शायद बहुत सारी समस्याओं के समाधान स्वयमेव निकल आएंगे। समय इतना ही है, आप दोनों आई और हमारे श्रोताओं के साथ अपने संस्मरण और अपने इस जानकारी को बांटा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
2: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार। इस परिचर्चा में भाग ले रही थी प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर अनीता गुप्ता, भेंट की ओपी सिंह ने। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम

0: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वीतदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 6:15 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे मिट्टी पानी की जांच और गर्मियों में गहरी जुताई के लाभ। साथ ही साथ सुनिएगा वार्ता जिसका विषय रहेगा बगीचा लगाने हेतु लेआउट। वार्ताकार होंगे डॉक्टर धनराज शर्मा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता, गर्मियों में पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या समाधान हैं। जानकारी देंगे डॉक्टर शंकर सिंह, भेंटकर्ता दिलीप यादव।

ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं ब्रज नवकथा किस्मत को लिखो। प्रस्तुत करेंगे शिवदत्त चतुर्वेदी।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा देशभक्ति परक रचनाएं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं भजन, कलाकार होंगी दीपाली जैन, साथ ही साथ सुनिएगा गजलें। रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: कार्यक्रम सुनबे बारे सबै भैया बहनन को हमारे राम राम। भैया देखो खूब बाइटो पड़ रो है, गर्मी खूब पड़ रही है, पूछो मती हैं, परेशान है जाते हैं, सवेर ते पसीना आ जाता आ तो रहते है। पर भैया जी भाइटो बड़ी काम को है। अरे कैसे काम को है, हमारे किसान भैयान के लिए तो बहुत ही कहो जाए सोने में सुहाग हो। ऐसे कि जो किसान भैयान के खेत खाली पड़े हुए हैं, जा समय उनने फसल लई है पहले और खेत खाली डाल रखे हैं, पड़े हुए हैं, अभी कोई फसल ना हुई तो वामे गहरी हलते जुताई करो भैया। जुताई करवे से क्या होगा कि बाकी अंदर जो आपके लार्वा हैं, कीटाणु बैक्टीरिया जो भी हैं, और या रोग के कछु भी में और खरपतवार के बीज हैं, अंडा हैं, तो वो जब जुताई होवेगी तो मिट्टी के संग वो ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आ जाएंगे तो अब इन दिनों के जो है सूरज की सीधी किरणें और तेज़ पड़ रही हैं तपन वाली, तो वैसे वो जब अंदर तक माटी में प्रवेश हो जावे हैं तो वो नष्ट है जाए हैं। जो भी कीटाणु हैं, जो आपके जो भी वामे जीवाणु हैं, कोई भी तरह के खरपतवार के बीज हैं, अवशेष हैं, तो जा कारगु भैया आप अवश्य करो, क्योंकि जा में कोई लागत ना आनी है। बस आपको थोड़ो ध्यान देना है, जरूरी कार्य है ये। जैसे आपकी जो रोग की और खरपतवार की जो दवाई डालते हैं ना, पहली बात तो बाको खर्चा बचेगा। जा नियम को अपनाते रहो हर साल, और खेत की माटी मजबूत है जाएगी, स्वस्थ है जाएगी। किसान भैया आपको खर्चा बच जाएगा, तो फिर ज़्यादा ही आपको उत्पादन में आपको हमें लाभ अपने आप ही नज़र आवेगा। और देखो पेड़ पौधन की तो ऐसी बात है कि जो किसान भैया आते हैं ना, भी अपनों ऐसा कछु नेकाद आदि बीघा सो कछु नेकाद ठोर ऐसा छोड़ देते हैं कि यूँ ही पड़ो रहते हैं। हम तो भैया ये कहें बाको भी आप इस्तेमाल करो, अरे कछु ना है तो कछु पौधा लगा दियो, बगीचा बन जावेगो, अगु आमदनी होवेगी और फल खाइबे को मिलेंगे। बात चोखी हतेगी ना है। तो भैया देखो हम और आप ऐसे ही बाग लगा सकते हैं, पर हमें कहूँ जानो और ना है, विशेषज्ञ की बड़ी बढ़िया जानकारी, पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो सुन ले में है जावार्ता को बगीचा लगाने हेतु ले आउट डॉक्टर धनराज शर्मा की ये जानकारी लियो भैया।
1: किसान भाइयों, वृक्ष क्षेत्र में हम बेर, आंवला, नींबू, अमरूद, पपीता, अनार, आम, लसोड़ा, बेल का बाग लगा सकते हैं। जिन किसान भाइयों को नया बाग लगाना है वो इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे वगैरह खोदने से पहले बगीचे का सही तरह से रेखांकन करें, क्योंकि अगर पौधों को सही फासले पर नहीं लगा गया तो बाद में जब पौधे बड़े होंगे तब उनमें शस्य क्रिया करने में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बाग का सही तरह से रेखांकन करें, जिससे प्रतिकार क्षेत्र में अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाए जा सके तथा प्रत्येक वृक्ष के विकास के लिए एवं उसके चारों ओर पर्याप्त दूरी हो एवं बाग के बीच में अंतरास्य उगाने के लिए एवं आवश्यक कृषि क्रिया करने के लिए सुविधाजनक जगह उपलब्ध हो सके। बगीचे का रेखांकन की विधियों में वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार और पूरक विधि मुख्य हैं। वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी समान रहती है। प्रत्येक पौधा एक दूसरे के लंब पर स्थित होता है। ये पौधे लगाने की सबसे सरल विधि है। इसमें बाग में निराई गुड़ाई करने, सिंचाई और शस्य क्रिया करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आती तथा सफलतापूर्वक इसमें पौधे लगते हैं। पौधों के विकास के लिए पर्याप्त हवा व प्रकाश भी मिलता है। दूसरी जो बाग लगाने की विधि है वो है आयताकार विधि। यह भी वर्गाकार विधि की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर यही है कि इसमें कतार से कतार, पौधे से पौधे की दूरी में थोड़ा सा अंतर होता है। कतार की दूरी पौधों की परस्पर दूरी से थोड़ी सी अधिक होती है। इस विधि में फल वृक्ष

को कतार के बीच में बागवानी क्रिया करने तथा सिंचाई को दो दिशाओं में की जा सकती है। पौधों की विकास के लिए पर्याप्त हवा व प्रकाश भी सरलता से उपलब्ध होता रहता है। ये दो ही जो मुख्य विधियाँ हैं बाग लगाने की, वर्गाकार और आयताकार। इसके अलावा हम त्रिभुजाकार विधि से भी हम बाग में पौधे लगा सकते हैं। त्रिभुजाकार विधि में जो अंतर है, जो अपने जो पहली लाइन है जो दूसरी लाइन है उन दोनों के बीच में एक पौधा लगा देते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन अपन किनारे से शुरू करेंगे तो दूसरी लाइन उसके बीच में शुरू करते हैं और एक त्रिभुज का आकार ले लेता है। इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो समसंख्या वाले पौधे हैं वो दो पौधों के बीच में वो लगाते हैं। जो ऊपर वाली जो लाइन है पहला पौधा किनारे पर लगा उसका जो दूसरा पौधा जैसे 8 मीटर पर लगा रहे हो तो नीचे वाली जो दूसरी लाइन आ रही है उसमें दोनों पौधों के बीच में जो जगह आ रही है वो नीचे की लाइन में लगाने पड़ेंगे आप। चौथी जो विधि है वो है षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि में पौधों का रोपण षटभुज की आकृति में होता है जिसमें 6 संभव त्रिभुज बनते हैं। इसमें 6 पौधे षटभुज के बाहरी भाग कोनों पर लगाते हैं एवं एक वृक्ष षटभुज के मध्य में लगाते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि से लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। एक विधि जो बाग लगाने की है वह पूरक विधि। इस विधि का ज़्यादातर हम प्रयोग कम करते हैं जब पौधे जैसे वर्गाकार विधि में आपने लगा दिए, जैसे कुछ पौधे जिनमें फल कई साल बाद मिलता है 4-5 साल बाद, तो इसके बीच में हम एक पौधा इस जो वर्ग के अंदर चारों वर्ग ऊपर आपने जो पौधे लगाए उसमें बीचों बीच एक पौधा आप लगा सकते हैं जो कम उसकी आयु, जैसे पपीता लगा सकते हैं, फाल्स लगा सकते हैं। तो पूरक विधि का रेखांकन वर्गाकार विधि तरह से करते हैं। इसमें कतार से कतार पौधे की पूरी दूरी समान रखते हैं। इसमें वर्ग के बीच में एक पौधे का रोपण किया जाता है। ये 5वां पौधा अस्थायी पौधा होता है जो कम समय के लिए फल लेने के लिए लगाते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया पपीता और फाल्स इसमें लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपन को जो रेखांकन करना है, ज़्यादातर जो फलदार पौधों का रेखांकन करते हैं हम वो वर्गाकार विधि से करते हैं। अब दूसरी बात आती है, अगर आपने रेखांकन करना है तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए हमें जो अपने क्षेत्र में जो मैंने आपको फलदार पौधे बताए उनको कितनी कितनी दूरी पर लगाने हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें आम का, अगर पौधा लगाओ तो ये 10 मीटर दूरी पर लगता है, लेकिन जो इसकी बोनी किस्में हैं आम की, जैसे आम्रपाली मल्लिका की, वो आधी दूरी पर लगती है 5 मीटर पर ही। ऐसे जो अमरूद के पौधे हैं वो 7-7 मीटर दूरी पर लगाते हैं। पपीते के पौधे 2-2 मीटर दूरी पर लगाते हैं। नींबू 6x6 पर लगाते हैं। मौसमी भी 7x7 पर। बेर के पौधे 8-8 मीटर पर। आंवला के पौधे 8x8 मीटर पर लगाते हैं। अनार के पौधे 5-5 मीटर पर लगाते हैं। बेल गिरी है उसके पौधे 8-8 मीटर पर, और फालसा 3-3 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो ये फासला आपको रेखांकन करने के लिए ध्यान रखना है। इसमें जब अपन बाग लगाते हैं तो मेड़ के पास वाली जो लाइन है उसमें हमेशा आधी दूर रखते हैं। जैसे आपका जो पहली लाइन आएगी बाग के पास में, जैसे अपन बात करें जैसे बेर आंवला का बाग लगाना है, इसकी दूरी जो 8-8 मीटर में बता रहा हूँ, तो मेड़ के जो पहली लाइन आएगी वो पौधा हमेशा 4 मीटर पर लगेगा। क्योंकि जब पहली मीटर पर 4 पर लगा दोगे और जो पहली लाइन साइड में आएगी वो भी 4 मीटर पर लगेगी, उसके बाद जो भी लाइन आएगी वो 8-8 मीटर दूरी पर आपको लाइन खींच के, और जहाँ 2 लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ पर आपको 8x8 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने हैं। अब ये गड्ढे खोदने का समय कौन सा होता है इसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो मई जून का महीना है ये गड्ढा खोदने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें बेर, आंवला, अमरूद या आम, तो इनके लिए अगर आपको गड्ढे खोदने हैं तो 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा आपको खोदना है। ये गड्ढे खोदने का कार्य मैंने अभी आपको बताया, ये मई जून के अंदर ही खोदते हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर जो गर्मी का तापमान है 45, 47, 48 डिग्री, जो आपने गड्ढे से जो मिट्टी निकालोगे वो गड्ढे के बाहर ही फैलानी है, और इस गर्म तापमान की वजह से इसमें जो कीड़े हैं, बीमारी है या फफूंद के जो जर्म्स हैं वो सारे इस गर्म तापमान की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। और 5-10 दिन तक खुला रखना गड्ढे, यानी कि आज गड्ढा खोदा कल आपने भर दिया, 10-5 दिन उसको खुला छोड़ देंगे तो उसमें सारे जर्म सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो गड्ढा आपने खोदा है उससे जो मिट्टी बाहर निकाली उसमें करीब हर गड्ढे के लिए 20 से 25 किलो तो देसी खाद, जिससे अपन गोबर खाद काम ले सकते हैं, किसान भाई सबके गाय भैंस जानवर है, तो 20 से 25 किलो देसी खाद, 1 किलो सुपर फास्फेट और 50 से 100 ग्राम एंडोसल्फान या मिथाइल पैराथियन चूर्ण, जो अपने सरसों में कटा लग जाता है वो आप में काम मिले तो डाल दें। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर गड्ढों को 10-15 दिन बाद वापस बंद कर देते हैं। बारिश के मौसम के अंदर गड्ढे थोड़ी बैठक ले सकते हैं,
तो अगर गड्ढा ज़्यादा बैठ जाए तो उसमें वही खाद मिट्टी।

0: का मिक्सचर भर के गड्ढे को आपको वापस बंद करना है। अब मैं आपको बताऊं कितनी कितनी दूरी पौधे लगाना है। जैसे पपीता का आपको बाग लगाना है तो पपीते के लिए आपको पपीता का पौधा 2-2 मीटर दूरी पर लगाना है, और इसके लिए जो गड्ढे का आकार है वो हम रखते हैं 1.5 फुट बाय 1.5 फुट, मतलब 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट गहरा आपको गड्ढा खोदना है। अगर नींबू का बाग आप लगाने जा रहे हैं तो इसमें 6-6 मीटर की दूरी आपको रखनी है, और गड्ढों की जो साइज है 2.5-2.5 फुट के अपन गड्ढे खोद सकते हैं। बेर का, आंवले का, ये आपको मैंने बताया, इसके लिए 3 फुट बाय 3 फुट बाय, मतलब 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा गड्ढा करना है। गड्ढे खोदने के लिए 8-10 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, गड्ढा खुला रखना है। बाद में इसमें मिट्टी और देसी खाद और 1 किलो सुपरफास डालते हैं। अब देसी खाद क्या काम करता है गड्ढे के अंदर? देसी खाद अपन इसलिए मिलाते हैं कि जो आपकी जो मिट्टी संरचना उसको सुधारता है। गड्ढा जो आप जो नया पौधा लगा हुआ है उसमें देसी खाद की वजह से एक तो पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे, दूसरा जो उसमें मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता, उसमें मतलब नमी ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। अगर आपने देसी खाद नहीं मिलाया तो आप पानी दोगे, वो पानी या तो नीचे चला जाएगा या भाप बन के उड़ जाएगा। अगर आपने खाद मिलाया तो पौधों को पोषक तत्व मिलेंगे, साथ में उसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। दूसरा जो मैंने आपको बताया सुपरफास्फेट 1 किलो डालना है, तो ये सुपरफास्फेट खाद क्या काम करता है? इसके अंदर जो आप जो नया पौधा लगाओगे बरसात के मौसम में तो इनकी जो जड़ चलेगी, तो जड़ों के विकास के लिए अपन सुपरफास्फेट मिलाते हैं। और तीसरी मैंने बताई थी आपको एंडोसल्फान या मिथाइल पैराथियन चूर्ण 100 ग्राम, ये इसलिए मिलाते हैं कि जो भी पौधा आप बाहर से लाओगे या कोई नर्सरी से लाओगे तो उसमें किसी तरह की कोई कीट वगैरह साथ आ जाए, या कोई आपके खेत में दीमक की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से आपका, मतलब दवा मिलाने की वजह से इसमें जो आप पौधा लगाओगे उसमें किसी तरह का कीड़ा नहीं लगेगा। पौधे लगाने का जो समय है वो बरसात का मौसम सबसे बढ़िया है। बरसात के मौसम में जो भी अपन पौधा लगाएंगे उसकी सर्वाइवलिटी, मतलब उस पौधा आपका उसमें मरने के चांस थोड़े कम रहेंगे। और मौसम में जैसे आप गर्मी के मौसम में लगा दो या फरवरी मार्च के बाद में लगाते हैं, या सर्दी में लगाओगे तो पौधे मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जो अपन पौधा लगाते हैं उसमें 90 से 95% तक पौधे आपके सर्वाइव करेंगे। दूसरे मौसम में लगाएंगे तो पौधे थोड़े मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो किसान भाइयों, अपन को जो बाग लगाना है तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पौधा रेखांकन करें उसको प्रॉपर दूरी पर लगाने, मतलब जो पौधे बताए मैंने बेर आंवला 8-8 मीटर पर लगाना है, आम लगा रहे हो जैसे दशहरी या दूसरी जो वेरायटी सफ़ेदा वगैरह, या 10 मीटर पर लगाने हैं। जो ड्वार्फ वेरायटी अपनी आम्रपाली मल्लिका है वो 5-5 मीटर दूरी पर लगाते हैं। अगर आपने गड्ढे बिल्कुल पास पास कर दिए तो आगे चल के आपको बहुत परेशानी आ सकती है, क्योंकि जब पौधा सही तरीके से नहीं गया, पौधे के विकास के लिए पूरी जगह नहीं मिलेगी तो पौधे में आगे मतलब उसमें फ्रूटिंग कम आएगी, और गड्ढे खोदने में, दूसरी कृषि क्रिया करने में भी आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अच्छे तरह से आप रेखांकन करके सही तरीके से अगर बाग लगाएंगे तो ये आपकी आगे चल के परेशानी, क्योंकि आप जो आज जो बाग लगा रहे हैं उसकी उम्र 25-30 साल तक फल देने की है। अपन जो दूसरे खेती करते हैं वो तो 4 महीने के अंदर कट जाती है, लेकिन जो आप बाग लगा रहे हो 25-30 साल तक आपका साथ देगा। और इसमें कई तरह के जैसे अंतरशस्य क्रिया करनी पड़ती है, अंतरशस्य से अपन दूसरी फसल भी ले सकते हैं, कृषि क्रिया बार बार करनी पड़ती है, तो इसलिए इसमें प्रॉपर दूरी पर आपको लगाना है। तो अगर आप सही तरीके से बाग लगाओगे तो आपके बाग में जो भी फल पैदा होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता होगा। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जो बाग लगाने किसान भाई इच्छुक है वो बाग को मतलब सही पहले रेखांकन करें और सही आकार का गड्ढा खोद के, मैंने जिस हिसाब से आपको खाद का, मिट्टी का या जो दवाई डालना बताया डाल के अगर करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा।
1: किसान भैया और जानकारी दे रहे विशेषज्ञ डॉक्टर धनराज शर्मा बगीचा लगाने हेतु लेआउट। तो भैया आपने अगर कहूँ भाई आपके पास ज़मीन है थे तो आप बगीचा अवश्य लगाओ, बाकी तैयारी कर लियो वही से, और वहाँ में पौधन को रोपण जरूर कर दियो, जैसे आपकी एक आमदनी और बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ती रहे भैया अवश्य, और का है जेब में रुपया पैसा खनखनाते रहें, तीर्थ करें, आए धाम कर लाएँ, और अपने घर को खर्चा बालकन को चलतो रहे, पढ़ाई लिखाई स्वस्थ रहें सब, और मनोरंजन है जाएगा। जब बाग बगीचा पेड़ होंगे ना उन्हें देख के तो अरे फिर तो आनंद ही आ जाएगा। तो सुन ले में है का कि अरे लोकगीत ढोलक ने बजाई जावे, श्याम कमल रसिक को गायो भयो, ये लोकगीत सुन लेते हैं, दर्शन करवे को चल रहे भोलेनाथ।

भैया आपने अभी सुनो ये लू गीत श्याम कमल रसिक को गायो भैया, दर्शन करवे को चले हैं भोलेनाथ। बिल्कुल सही बात है भैया, और सब आनंद आ जावे ठाकुर जी के चरणन में, उनको दर्शन मिल जाना चाहिए। और ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, हम और आप तो देखो परेशान है ही रहे हैं, व्याकुल है जाते हैं नेक देर में। और हमारे जो किसान भैया के पशु जेंगरे हैं, पशु पालक भैया हैं, उनके जो पशु हैं उनको भी ये गर्मी भाई

0: टो है का अपनो असर दिखा देते हैं भैया। जाले आप अपने पशुअन को एक तो दोपहरी के समय मती निकालो, 11 बजे से पहले ही अंदर रखो उन्हें, संजा को 4 बजे निकालो, और फिर जा जगह पे आप रखो, वह जगह पूरी साफ सफाई हुए और वहाँ पे गीलो करके टाट पर्दा लगाई दियो। कछु तो देखो पंखा चलाए रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है, चौकी बड़ो कीमती पशु आवे है। अगर पशु को कोई बीमारी रोग है भी जाए है भैया, तो बाकी का जो फिर विशेषज्ञ होते हैं हमारे पास, बड़े अच्छे विशेषज्ञ जानकारी देते हैं बातें, आपको पशु स्वस्थ रहेगा। अगर कोई ऐसा लगे तो तुरंत विशेषज्ञ और चिकित्सालय जाए के वहाँ को इलाज करा लो। तो भैया अब ऐसी ही आपको हम सुनवाए रहे हैं ये बातचीत, गर्मियों का पशुओं पर प्रभाव और समाधान, डॉक्टर शंकर सिंह से दिलीप यादव की बातचीत सुनो भैया।
1: किसान भाई हमारे साथ हैं वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा के डॉक्टर शंकर सिंह जी, आप विशेषज्ञ हैं। गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है और इस बार मौसम ने अप्रैल की शुरुआत में देख रहे थे हम कुछ दोबारा से स्वेटर निकालने पड़े और अब मई जून को भी तपा देने वाली गर्मी, 44-45 डिग्री टेम्परेचर मथुरा में है, कई जनपदों में 47 तक तापमान पहुंच गया। कहा जाता है कि 50 डिग्री के पार तापमान जाएगा तो घास फूस में वैसे ही आग लगने लगेगी। ऐसी स्थिति में मनुष्यों और पशु और पक्षी इन तीनों के सामने बड़ा चुनौती है, बड़ी संकटापन्न स्थिति है। तो पशु हमें दूध देते हैं तो पशुओं के दूध उत्पादन पे उसका क्या प्रभाव होगा और उस दुष्प्रभाव से कैसे उन्हें बचाया जा सकता है?
2: बिल्कुल सही है, ये जो गर्मियां हैं ये दूध उत्पादन बहुत तेजी के साथ घटाती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि दूध उत्पादन को ही नहीं घटाती है, दूध की क्वालिटी को भी प्रभावित करती है। एक तरह से कहिए कि जो गाय परेशान है, स्ट्रेस में है, उसके दूध की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। जो पूरी तरह से स्वस्थ है और आराम से अपनी जिंदगी जी रही हो, उसके जो दूध की क्वालिटी, जो प्रोटीन और उनकी जो क्वालिटी आएगी उसमें स्ट्रेस हार्मोन नहीं रहेगा। जो स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे तो जो दूध कम होगा, साथ ही साथ उसमें स्ट्रेस के चलते जो उसकी क्वालिटी है वो भी डिटेरियरेट करती है। तो दोनों चीजों को समस्या ये गर्मियां देने वाली है।
1: स्ट्रेस की बात आपने कही तो जो पशु स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, उसकी दूध का आपने कहा तो क्वालिटी प्रभावित होगी, उसे पीने वाला जो
2: बिल्कुल उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई होता है और जब कॉर्टिसोल हाई रहेगा तो कॉर्टिसोल तो हमारा भी जब मतलब बढ़ता है तो स्ट्रेस की कॉर्टिसोल एक तरह से देखिए तो सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों में स्ट्रेस आता है। कॉर्टिसोल क्या करता है कि Type 2 diabetes इंड्यूस करता है। हालांकि इस पर रिसर्च नहीं है कि दूध में कितना कॉर्टिसोल आता है, लेकिन अगर वो कॉर्टिसोल आ रहा है और आप उसको ले रहे हैं, स्ट्रेस वाला दूध पिएंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर पे समस्या पड़ेगी।
1: यानी कि पशुओं का रखरखाव अगर किसान के स्तर पे ठीक नहीं है तो उसका असर चाहे वो दूध की क्वांटिटी से लेकर के क्वांटिटी और मनुष्यों में रोगों को बढ़ाने का कारक जिसे अमृत कहा जा सकता है,
2: लाइफ स्टाइल डिजीज जिससे हम लोग कहते हैं ना, आजकल हम देखे वर्क ज्यादा करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है, तो जो बीपी की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है, ये सारी समस्याएं स्ट्रेस के चलते ही हैं। तो स्ट्रेस वाला अगर हार्मोन हम अपना बढ़ाएं या कहीं से लें तो समस्याएं तो बढ़ेंगी।
1: वो आपका गर्मी से बचना है, पशु को स्ट्रेस से बचाना है, किन चीजों का?
2: एक तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब गर्मियां ज्यादा हो जाती है, शरीर के तापमान से बाहर का तापमान ज्यादा हो जाएगा तो शरीर से हीट जो है जो काम करने के चलते, डाइजेशन के चलते या सेल के फंक्शन के चलते जनरेट होता है वो एनवायरमेंट में डिसिपेट नहीं होता है। तो नहीं होगा तो अंदर का तापमान बढ़ेगा, जब अंदर का तापमान बढ़ेगा तो उसके बाद से जो पशु है उसकी फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो उसका प्रोडक्शन भी डेफिनेटली घटेगा। तो आपको क्या करना है कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिससे कि उसको शरीर से हीट को आराम से निकाल सके, यानी कि बाहर का तापमान आपको नॉर्मल रखना है। अगर पॉसिबल आपके पास डेयरी फार्मिंग है तो आपको वहां पे कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए, स्प्रिंकलर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ये तो गांव में है तो सबको छाए में पेड़ के नीचे, कहते हैं ना पेड़ सब कुछ है आजकल, पेड़ के नीचे अगर आप बांधते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे अच्छी ठंडी हवा रहती है, वहां पे जानवर जो है कंफर्टेबल फील करेगा। साथ ही साथ ताजा पानी हमेशा बार बार उसे पिलाएं, बार बार ठंडा पानी अगर आप नॉर्मल फ्रेश ताजा पानी पिलाते हैं तो उससे भी शरीर का जो तापमान है वो रेगुलेट रहेगा और उसके साथ में उसके खान पान का

0: विशेष ध्यान रखें। खान पान में ऐसी चीजें खिलाएं जिसमें पानी कम लगता हो और शरीर में पानी को रिटेन करके रखता हो। तो शरीर में पानी रिटेन कम लगना और रिटेन करके रखना, यानी कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। तो प्रोटीन इसमें है, या हरा चारा जिसमें पानी है, हरा चारा की मात्रा आपको थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए।
1: जैविक दालें और हरा चारा,
0: बिल्कुल। और उनके खाने का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप गर्मियों के दिनों में दोपहर में पशु टाइम चारा नहीं खाएगा तो अर्ली सुबह में जब थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तब उनको चारा खिलाए, उस समय वो ज्यादा खा लेते हैं और पूरे दिन तक रात में रहते हैं। फिर शाम को जब थोड़ी ठंड होती है तब उनको चारा ऑफर करें। तो खिलाने का तरीका भी थोड़ा सा टाइमिंग बदलना पड़ेगा, जल्दी से खिलाएं और थोड़ा सा लेट खिलाएं, तो उससे उसकी गर्मी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब डाइजेशन होता है तब हीट ज्यादा इवोपरेट होता है और शरीर के अंदर हीट जो है ज्यादा बनता है डाइजेशन के चलते, उस समय गर्मी ज्यादा लगती है। तो अगर आप दोपहर के समय में जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है उस समय चारा भी खिलाएंगे तो पशु खाना नहीं चाहता है।
1: चलिए रक्षा, आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर भाई हमारे साथ थे एक वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा से डॉक्टर शंकर सिंह, निश्चित रूप से ये जानकारी आपके प्रति लाभप्रद होगी। डॉक्टर साहब आपका और हमारे किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार
2: भैया, आप ये महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे डॉक्टर शंकर सिंह से, दिलीप यादव कर रहे बातचीत, गर्मियों का पशुओं पर प्रभाव और समाधान। तो भैया समाधान तो बिल्कुल होएगा, क्योंकि देखो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ ही समाधान कर सकते हैं। और तो और देखो मौसम को पता रख सकते हैं, ऐसा तो इंतजाम है बाकी का। अरे हमारे पास आते हैं मौसम की जानकारी, तो अब भैया आप देती हूँ आपको मौसम की जानकारी। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा आपको 27 डिग्री सेल्सियस। और भैया देखो हमारे जो किसान भैया आते हैं कि ना भी जो उनने जा टाइम बारी बे रखी हैं या फिर साग सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो वहाँ में भैया हल्की सिंचाई रखो, नमी है वो जरूरी है खेत में। और एक बात जी है कि जैसे आंधी को सो बन रो है, कहूँ पे ऐसे तूफान सो लग रो है, तेज हवा चल रही है, ऐसी स्थिति में आप सिंचाई को कार्य बिल्कुल मत करो। जब मौसम शांत है जाए, बढ़िया है जाए आपको लगे, तभी सिंचाई को कार्य करो। और अपनी पशु जैंगरिन को काऊ पेड़ के नीचे मत रखो ना खुद रहो, तो भैया ऐसो ध्यान रखो। और सवेरे धोताए थे कछु खाए पी के खेत के काम में लगो, अंगोछा तौलिया सिर पे जरूर बांध लो भैया, जैसे आप धूप से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो खेती बाड़ी पशु सब बढ़िया रहेगा, परिवार स्वस्थ और बढ़िया रहना चाहिए, है ना भैया। जब सब बढ़िया रहेगा ना तो समय जो कहे ना हमारा समय खूब अच्छा कट रहा है, तो समय अच्छा ही चलता रहे तो हमें आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। और अपने जो पशु हैं उनको दिन में कम से कम एक बार अवश्य भैया नहला दो और साफ पानी पिलाओ, और पानी को वह छाया में जरूर रख दो, ताकि वो सीरो सीरो रहेगा ना तो पशु खुश है के पी के नया आनंद लगेगा भाई, हो कि ना। अब वो तातो पानी गर्म पिवा देते हैं, नहीं खुले में धरो रहते हो कहूँ भी कछु कूड़ा फूड़ो भर जाते हो वहाँ में वही को, अरे पी ले वो, अरे प्यास में तो प्यास बुझावे को पी लेते हैं भैया, पर ऐसा मत करो क्योंकि पशु हमारा बहुत कीमती है, महंगो है। जैसे हमें और आपको गर्मी और हर चीज़ को एहसास हो गए हैं, परेशान है जाए हैं, रोग लग जाए, ऐसी हमारे पशु को भैया बेजवान है। और आप उनको जरूर ध्यान रखो, अपने बालकन को और अपनों भी गर्मी से बचाव रखो, घर को बनो भयो सुपाच्य भोजन जरूर करो। तो भैया अब समय को ध्यान रखे हैं ना, तो घड़ी की सुई होता है हमसे कह देते हैं कि अब हमारे कार्यक्रम को समय है चलो है समापन करने को। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

श्रेया घोषाल और प्रणब कुमार विश्वास की आवाज़ों में आपने सुनी ये भक्ति रचना। फिल्म का नाम कृष्णा और कंस।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्यिक इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ब्रज नवकथा किस्मत को लिखो, प्रस्तुत कर रहे हैं शिवदत्त चतुर्वेदी।
1: राम दुलारे काका तीर्थ करके कई साल पीछे घर लौटे तो अपने घर के स्वामी ठाकुर सूरजवान की हवेली में रोएबे पीटवे की आवाज सुन के एक क्षण ठहरे और सोचवे लगे कि ऐसो काहे गयो कि सूरजवान के घर में सिगरे बालक और लुगाई जातरियां रो रहे हैं। तभी सरजू हवेली में ते निकस के आयो और काका को राम राम करी तो काका ने पूछी, चौरे सरजू लाला कहाँ बात है गई भैया, हवेली में ते जे रोई भी पीटवे की आवाज कैसे आ रही है? भैया ऐसो कहाँ है गयो कि सिगरी घर के रोए रहे हैं? सरजू बोलियो, सुनो काका, तुम तो बहुत दिनान पीछे गांव में लौटे हो, सो तुमको नाय मालूम होएगी ठाकुर साहब की हवेली में बड़ी हृदय को बिदारवे बारी घटना घटित भई है। अच्छा, ऐसी कौन सी परलय पर गई भैया, मोइन ठीक ते समझाए के बता। काका ने जानवी को उत्सुकता दिखाई। अरे काका, कहा बताऊं, जमानो बहुत ही खराब आए गयो है, जाके भाग मुकद्दर में जो लिखो है सो तो भोगनो ही पड़े। भैया सरजू, जे बात तो तू बिल्कुल ही ठीक कह रहे हो, पर भयो कहा जे तो बताए। काका बोले, सो ही बताए भी की कोशिश कर रहे हूं काका, भयो जे कि ठाकुर साहब की छोरी मीनू सबकी लाडली हती, जे आप अच्छी तरह जानो, ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब बिनके चारों छोरा जोगिंदर बीरेंदर बिजेंदर और सुरेंदर हु मीनू पे लाड़ लड़ायो करते, और लड़ा में छोना इकलौती बहन है मीनू मिनकी। सरजू बोलियो, काका ने हाँ में हाँ मिलामत भय कही, देख लाला इकलौती छोरी तो घर की रौनक हुए तो दुलारी तो होगी ही। सरजू बोलियो, ठीक कह रहे हो काका, पर किस्मत में जो लिखे हुए बाके बानक पहले ही बनवे लग जाए। भयो जी के मीनू को दाखिला एमए की पढ़ाई के ताई अपने धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय में ही ठाकुर साहब ने कराए दियो, छोरी को पढ़वे में मन ज्यादा हो सो ठाकुर साहब ने दाखिला कराए वो उचित समझो। तो भैया जाने गलत का है, जब छोरी को मन पढ़ाई में लग रहे हो तो दाखिला कराना ही चाहिए। काका बोले, काका सही कह रहे हो तुम, पर बाई कॉलेज में भरतपुर को छोरा राकेश हु एमए में पढ़ रहे हो, छोरा स्वभाव थे बहुत ही बढ़िया हो, सो पढ़त पढ़त ही दो छोरी छोरा एक दूसरे को चाहे लगे। अब काका प्रेम तो प्रेम है, जे कब और कौन ते है जाए कछु कही ना जाए सके। सरजू की बात सुन के काका बोले, नीकी कह रहे हो रे भैया, प्रेम तो कबो काउते है सके। हां काका, सो बिन दोन को मन मिल गयो, दोनों ज्यादा ते ज्यादा संग रहे लगे। एक दिना जे बात ठाकुर साहब को पतो लगी तो पहले तो ठाकुर साहब ने मीनू ते बात करी और फिर बछोरा राकेश को बुलायो। छोरा सुंदर हो और सुशील हो तो ठाकुर साहब ने अपने छोरान सो बातचीत करके मीनू को रिश्तों करबे के ताई छोरा के घर जाएबे को निर्णय लियो। अगले दिना छोरा के घर जाए के बाके हाथ पे नारियल चांदी को सिक्का और मिठाई धर के छोरा को पक्की करे आए। काका ने सहमति जताई, ठीक है भैया पक्को करना ही चाहिए। हां काका, सो कछु दिना पीछे तारेन की छांव में सो मुहूर्त देख के बड़े धूमधाम ते ठाकुर साहब ने मीनू के हाथ पीरे कर दिए, सिगरे गाम ने कन्यादान करियो। ठीक है सरजू, फिर का भयो भैया।

0: बाकी मैया और छोटी बहनों होते। और तुम तो जानो काका लुगाइन में नेक नेक सी बातन पे कहन सुनन है जाए। सोई भयो और मीनू ने जिद पकड़ ली कि राकेश अपनी मैया और बहन को छोड़ के बाकी संग अलग घर लेके रहबे तो वो रह सके। राकेश ने खुल के मने कर दई कि तुम चाहे तो लड़ो चाहे तो प्यारते रहो पर मैं अलगोचो ना ही करूंगो। ठीक बात है रे सरजू, वो कौन ते अलगोजो करे भाई और चो करे? अपनी मैया और बहनते कहूं अलगोजो करो जाए, जे तो जिम्मेदारी थे जी चुराई बेवारी बात है। ठीक करो वह छोरा ने, जहां ठोर पे तो निखालस गलती मीनू की हती। काका बोले, हां काका बात तो सही कह रहे हो, मीनू की गलती हती, पर मीनू की तो औरों गलती हती। छोरी जिद पे उतरी आई और जब राकेश ना मान्यो तो बाकी घर को छोड़ के यहां हवेली में चली आई। अच्छा, सूरज की बात सुन के काका बोले, हां काका फिर बाने अपने भैयान सो राकेश के बारे में कछु गलत सलत कही होगी तो वे सभी बड़े नाराज है गए। बिन्ने आपस में कछु काना फुस्सी सी करी और अगले दिना बड़ो छोरा जोगिंदर भरतपुर राकेश के घर पहुंचो और रामा कृष्णा करके बोलियो, जीजा जो भई सो भई पर अब सिग बातन को भूल के आपसी प्रेम भाव बनाओ, चलो मेरे संग और मीनू को अपने संग लिवाए लाओ। सो काका राकेश बा के संग चलो आयो। तो भैया जी तो माने ठीक ही करो या मैं गलत कहो? काका बोले, काका इनने बा को खूब ही सत्कार करो, दिन भर बढ़िया बीत्यो, रात को ब्यारू करके जब सोईबे को नंबर आयो तो चारों भैया कहवे लगे कि जीजा चलो आरा पे सोमेंगे, माही बिस्तर है गए हैं। पांचों आरा पे आए गए और सोईबे ते पहले राकेश के दूध में बिन छोरान ने ऐसो कछु मिलाए दियो कि भाई होश ही ना रहे हो। काका बोले, जो तो बेवकूफी को काम करे हो रे सरजू, ठाकुर साहब के छोरान ने ऐसो नहीं करना चाहिए हो। सरजू ने सहमति जतामत भई आगे की बात कही, ठीक कह रहे हो काका पर आगे की सुनो, जब राकेश को नशा है गयो ता पीछे चारों ने बाकू बाकी खाटते बांध के आराते चीर दियो, चारों लंग खून की धल्ली चल गई काका। अरे राम राम राम सरजू, जे अच्छो ना करो, जे तो राक्षसन कोसो काम कर दियो रे ठाकुर साहब के छोरन ने। काका बोले, सरजू ने हामी भरी और बोले, काका राकेश की हत्या करके बेचारों साफ सफाई कर रहे ताई समय सवेरे की चाय लेके मीनू आई और बाने जब राकेश के टुकड़ा देखे तो बिन टुकड़न ने देख के चीखती भई बेहोश है गई, बाकी चीख पुकार को सुन के और लोग आए गए। काऊ ने पुलिस को इत्तला कर दी तो पुलिस आई गई और चारों छोरान को पकड़ के ले गई। ठाकुर साहब तो पथराए गए हैं, मीनू को अभी तक होश ना आयो, चार चार इंजेक्शन लग गए पर भाई होश आई ना रहे हो। यातरिया घर के बालक और लुगाइन को रोए रोए के बुरो हाल है रहे हो काका, सरजू बोलियो। जे भलो नाए भयो रे सरजू, नेक्सी बात ते पूरी हवेली में मातम छाए रहे हो है, बहुत गलत भयो रे भैया जे बहुत गलत भयो रे, कह के काका ने अपनी आंखिन में आई भई नमी पहुंची और आसमान की लंग देख के बोले, सरजू भैया सब किस्मत को लिखो है, किस्मत को लिखो नाए मिटे।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज नवकथा किस्मत को लिखो, प्रस्तुत कर रहे थे शिवदत्त चतुर्वेदी। और आइए अब सुनते हैं ये ब्रज लोकगीत।

श्रोताओं, ये ब्रज लोकगीत अभी आपने सुना बबीता शर्मा की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा।

0: पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
1: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार

0: कक्ष से शैलेन्द्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उप क्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉ सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
2: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है। तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की तेज रफ्तार फिर भी नई उम्मीद नई आशाओं और आपके ढेरों संदेशों के साथ लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीत आपके भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। तो आइए करते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ। कार्यक्रम का पहला संदेश हमें प्राप्त हुआ है गुड़गांव से पुलकित और शुभांशी रावत का। अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं एटा उत्तर प्रदेश से दीपक, ज्योति और सक्षम। अगला व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ है कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, दलिका, पुनावली पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा, सोनवने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु और रिदान खुराना। वर्सिंगी बुलढाणा से अमोल मानकर, शोभा ताई, श्लोक और दीपाली, इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव, शशिकला, सुमेध, साधना और पवन। जज्जर हरियाणा से जुड़े बिट्टू भाटिया, रीता और इनके सभी परिवारीजन। कार्यक्रम में अगली हाजिरी लगा रहे हैं कल्याण मुंबई से किशोर, सुजाता, प्रतीक। उमरखेड़ मारा से गंगाधर, प्रियंका, सम्यक और स्वरित। सहरसा बिहार से जुड़े राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय, ओम कुमार, गुंजेश, रिया रानी और इनके सभी साथी। मुंडीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन, फजान, फरहान और आजमीन। खेल बाजार पानीपत से जुड़े नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, इन्हीं के साथ नानक चंद्र मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू और भाविक सिक्का। सीतामढ़ी से आप सभी का संदेश हमें मिला है अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम, रूवीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पपी भाटिया। सनावत से यूनुस खत्री, शफी, इद्रिश, नूर, मीना, इन्हीं के साथ कासिफ। बुलढाणा मारा से वासुदेव बोधबड़े, अनीता, रमेश राव। अगली फरमाइश के साथ आप सभी नेहरू चौक पैटर्न से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल यादव। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष, चंदन यादव। श्रीराधा सिटी गोवर्धन और मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी, वियोमिनी, पुरंजय, कविता, गोविंद, सिमरन और इनके सभी परिवारीजन। यवतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, प्रतीक्षा, स्वैलेश, स्वप्निल और रियांश। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से जुड़े बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, राजेंद्र, प्रहलाद, उमेश और प्रमिला बंछोर। तेलंगाना से अगली फरमाइश कानुगुला, गोपाल, माहेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश। नांदेड़ से जुड़े प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन और जूली। अगली फरमाइश के साथ भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव गरिमा। मधुबनी राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और गुप्ता परिवार के सभी सदस्य। कोटपा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश उषा अमित हैप्पी रॉय, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल रॉय। चंडीगढ़ से जुड़े सतीश विमला अनेजा, मोताला मारा से विजय रत्नमाला और ओम कुमार सुरलकर, बंडू लोहार पोपलघाट से माया सिवांश, चंद्रकला देवीदास और इनके सभी सदस्य। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, अंकिता जोशी, मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डाबर, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, उमर राजेंद्र कटारे। बर्निंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं मीरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी, पुंजराज आरती आकर्षण, इन्हीं के साथ जय श्री रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा मीनाक्षी दिलीप और इनके सभी सदस्य, आकली दीवान मध्य प्रदेश से। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकैस्ट्रो। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका सानू और अर्चना कुमार, कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से गुड़वन श्रीवास, अरुणा, आयुष, विवेक और नीक के साथ आयुषी श्रीवास। रेलवे रोज गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम, नजमा और सरिता। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता आरजू हसमुखलाल, बुलबुल शक्ति, संजीव चिंदल। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य। चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विकी, रौनक और रविंद्र सेन। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया, राहिम मुन्ना, दानिश और आसिफ। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब रही, मेरा जहां, संदेश प्राप्त हुआ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। शाहूनगर यवतमाल से जुड़े हैं राहुल मनवर, सरला रोशनी, चेतन विशाल, प्रियांशी मनवर। कार्यक्रम में अगला संदेश प्राप्त हुआ है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोदले और आरती।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। गांव गोपी की नगरिया से मिट्टलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पुला से विजय सिंह, भानु प्रताप, अनुराधा रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके सभी परिवारजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, चसोदा, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा। गांव कुमोद वन से रमेश, सुनील, रचना, साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्य। हाउसिंग बोर्ड

भरतपुर से अजीत सोनिया सिवांश चुन्ना। राहीनगर गंजुडवारा से शमसुल खान, अदनान फैजान, ताबिश आदाब और अनु। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता, राजनगर मधुबनी से फूल, रंगीली और राणा। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंगल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप सिंह। पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया, जिया, तुसी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंत लाभ और इनके सभी परिवारीजन। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। अगली फरमाइश के साथ आप सभी जुड़े हैं, गार्डन रोड पैटर से बाबा साहिब सरगर, ज्योति शुभम और महेश सरगर, सैयद आलम हाशमी, सलमा और असद अरहाम। संदेश मिला अजमेर शरीफ से। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनाज, नावेद, सुहेल, रसीद, अनम और यशव। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी, अंकित कांगड़ा। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं, बुलंदशहर से पंकज, चंचल, रशिका, आकृति, वंशराज सिंह, गुन्नौर से फारूक अली, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी, गीतिका खोरवाल। अगली फरमाइश के साथ मामूलवाड़ी नांदुरा से एस आर आडोकार, विजया आडोकार। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज फरदान, फरदीन, सुहान और अबान अब्बासी। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और पूजा खटक। अगला संदेश हमें मिला है, चंदनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग का। धनोरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, आयान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। धाकर से जुड़े भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं, थान खमरिया छत्तीसगढ़ से कन्हैया राजपूत, युवराज राजपूत। दरियापुर भावली महाराष्ट्र के श्रोता, गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले, शेरी वडनेरा कोला से अरुणा, बलदेव, आदित्य दामोदर। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन से विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानुप्रिया, देवाश्री, मेघाश राशि, अनुराग मोहन। संदेश प्राप्त हुआ किशनगंज बिहार से।

हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके नंदा हनुमान बोटके, अंबेडकर चौकी वाकोडी से उत्तम स्वराज। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तुषार। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या रोशनलाल और हेमलता डिंपल देवांगन। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद नदीम पटेल। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या आरव, मेगा साक्षी आशीष। दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना खान, शकीला अंसारी। नलेश्वर नगर नरवेल मारा से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण राजकुमार और आशीष। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम टशन, आवाजें सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की।

फारबिसगंज से कोशेश्वर पूनम और मेनका काला। जय श्रोताओ, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। फिर से हाजिर होंगे आपके ढेरों संदेश और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब सारा रखिए ध्यान। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना अमिताभ भट्टाचार्य, सचिन जिगर, शिल्पा राव और वरुण जैन की आवाजों में। फिल्म का नाम स्त्री 2।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

अभी तक आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गरम मसाला के कुछ गीत।

0: sala.
1: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा समीर ने, संगीत प्रीतम का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गरम मसाला के कुछ गीत।

श्रोताओं, इस गीत को आवाज़ें दी थी हेमा सरदेसाई और सुखविंदर सिंह ने। गीत लिखा समीर ने, संगीत प्रीतम का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म गरम मसाला के कुछ गीत। और आइए आप सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

श्रोताओं, इस गीत को आवाज़ें दी थी अदनान सामी और साथियों ने। गीत रचना समीर की, संगीत प्रीतम का था। और इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म गरम मसाला के कुछ गीत।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 9:15 पर हम प्रसारित करेंगे श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नवरंग। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीत, तो भेजिए हमें व्हाट्सएप संदेश। संदेश भेजने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर 94-122-25-575 ये रहेगा हमारा मोबाइल नंबर। और अब रात्रि के 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से

0: सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की

0: अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुसार

0: रूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर-17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर-15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz underscoring its importance for regional

कार्यक्रम नवरंग सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। यहाँ श्रोताओं, आज है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन हम आपके लिए लेते कर आते हैं कार्यक्रम नवरंग रात्रि 9:15 से। तो ढेरों संदेशों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नवरंग लेकर। कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये पहला संदेश। संदेश मिला है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। पदमपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन।

और राजेंद्र शाह। हाउस भुचो कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत। कुम्भार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रदमेश संतोष और पांडुरंग कुम्हार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़े महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नावेद हसन, सुहेल, रसीद अनम और यशफ अब्बासी। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। दरियापुर भावली महाराज से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक, शेरी वडनेर अकोला से अरुणा, बलदेव, आदित्य दामोदर।

किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, इन्हीं के साथ राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोन बने, करिश्मा अविका साइसा सोन बने। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार और पूजा खटक।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था दलाल। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं गांव गोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पुला से विजय सिंह, भानु प्रताप, अनुराधा राम, मनोज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके सभी परिवारीजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसोदा, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा। गांव कुमोद वन से रमेश, सुनील, रचना और गब्बर। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से

अजीत सोनिया शिवांश चुन्ना। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब जुड़ा है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता पलक, नसीब लुबना और यश मंसूरी। दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना खान और शकीला अंसारी। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूढ़त, नेहा दीपक, मयंक चेतन नाहटा। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग आकांक्षा और माही मलिक। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल निशा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान, पूजा परिहार। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, ईशान सैनी। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन। रोहिदास चौक पर्णपुरी सिटी से प्रशांत, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के। महोबा बुंदेलखंड यूपी से राजपाल जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना, रोनिका, चंद्रेश और सुनील पाठक। धनौरी तेलीवारा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, आयान। फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरलाल, अविराज और गुरनूर शुभदीप सिंह। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। चंडीगढ़ से जुड़े सतीश अनेजा और विमला अनेजा। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब जुड़ा है आप सभी सुधा, काजल, मीरा और अनामिका शर्मा। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, सुनीता साहनी, इन्हीं के साथ डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप और इफ़ज़ाल। राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, पीयूष कुमार। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा, अभिषेक और हर्षित नामदेव। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

रोशनी इन्हीं के साथ इनके मम्मी पापा पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से, मधु नायक। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा ध्रुव, फाल्गुनी जोशी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश और इनके सभी परिवारीजन। अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, अकमल और नफीसा प्रवीण। कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत राधा रानी और विक्रम अर्चना साक्षी ढाबी। संदेश मिला सिंधरी जिला बालोतरा राजस्थान से। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल मंजूरंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब अलमास बानो, छोटू शंकरलाल, वनिता और मोहम्मद हसनैन पवार। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या नितेश और नियति कुमारी। बोरसड़ा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला ओम कुमार सुरलकर। फूल चिंचोली तालुका पठनपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा मुमताज, दिलशाद नसीर, बाबूबी मुलानी और बादशाह मुलानी। संबलपुर कांकेर से पागुराम ज्योति और ओजस्वी यादव। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, मैंडी सौरभ और सायना निवान शर्मा। राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप और हर्षा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत वर्मा, मुरली नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। बुलढाणा वर्षिंगी महाराज से अमोल मानकर, शोभाताई दिलीप और श्लोक मानकर। मोहम्मद इसहाक, खतीजा मोहम्मद अशफाक, आफरीन अल्ताफ और नीलो पर संदेश प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं सतवीर सिंह विजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या विजारनिया। संदेश मिला जिला सिरसा हरियाणा से। डोंडी लोहारा लोनी से नसीमुल इस्लाम और दानिश। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना बेनी दयाल और शालमली खोलकड़े की आवाज़ में, फिल्म का नाम रेस 2। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ हाजिरी लगा चुके हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा, इशप्रीत, सुहानी, पंकज, रोहित, मीनाक्षी और सोनिया ने। खड़क सिंह छौकर, प्रकाश नगर, मथुरा से। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी, सहारनपुर से। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम और पवन, इन्हीं के साथ संजीव।

वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़ चुके हैं। हीरावली फाजालिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके सभी परिवारजन। अंसारी कॉलोनी दिल्ली से अस्मा और नाजमा। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली, सोनम आशीष। मोहल्ला हलवाईयन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर। खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, इन्हीं के साथ आयुषी, रमेश, शेख मूसा, राजकुमार और सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं। महादेव पारा से मीरा, सिमरन और माया राजवाड़े। गांधीनगर गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल, निशा। दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम दे दे प्यार दे, गीत को स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता और अंजुम। दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश कुराना, किरण, लव्या आरब, मेगा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और पप्पी खुराना। मोहाली पंजाब से बब्बल और ओम प्रकाश मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। भिलाई छत्तीसगढ़ से कौशल्या, रोशनलाल और हेमलता देवांगन। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष, बब्बू डब्बू। छत्तीसगढ़ से जाह्नवी, डोमिन यामिनी और रोहित डोम। डोंडी लोहारा से हरशंकर बेलदार, फर्जू प्रभा और जेल रोड रायगढ़ से उमाराज, जगदीश राज। बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल और उषा बाला, इन्हीं के साथ इनके सभी परिवारीजन। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुषी श्याम कुंवर। नांदेड़ मारा से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम कुमार, साई गायकवाड़। सिरसा हरियाणा से प्रताप, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव और इनके सभी साथी। उमरखेड़ मारा से गंगाधर पोपलवाड़, प्रियंका, सम्यक और स्वरित। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला, लाडली और रिमझिम चौबे। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस

अजीत आयुष और नंदिनी झंगेल। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली मोनिका और रानू। गांव उस पार से यादराम वीरेंद्र कुमार, भोली मनीष, काना कोमल, लड्डू वैष्णवी, प्रियंका और ओमवती। जलालाबाद वैसे सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर येमेकर, प्रमोद प्रदीप येमेकर। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम, इंदिरा सार्थक और सचिन शर्मा। पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, अल्लाउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा। हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव ने। मलकापुर से नारायण राजकुमार आशीष और नरवेल मारा से पीएस निर्मला और विशाल नहावकर।

श्रोताओ, इस गीत को आवाजें दी थी एआर रहमान और मधुशी ने। फिल्म का नाम युवा। और इसी के साथ कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं भजन। कलाकार हैं दीपाली जैन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भजन। कलाकार थीं दीपाली जैन और अब आइए सुनते हैं गजलें। कलाकार हैं गुलाम साबिर।

अभी तक आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद राशिद हुसैन का ख्याल गायन। निबद्ध है राग रागेश्री में, तबले पे संगत की है आनंद गोपाल बनर्जी ने।

0: उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोग।
2: इस गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए।
1: नोट करो 8700001।
3: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद राशिद हुसैन का ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
5: नमस्कार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधान जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
6: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया

0: रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change.